ना बदला मैं, ना बदला वो, ना बदला तू। अगर कुछ बदला है तो सिर्फ कमबख्त, ये वक्त है बदला। पहले था कबूतर, अब है ट्विटर, पहले थी बुक, अब है फेसबुक, पहले था टेलीग्राम, अब है इंस्टाग्राम, पहले थी जादू की जापी, अब है वीडियो कॉल पे पप्पी। यही सोचकर पिछला और अगला

0: Hi, this is Amitabh Bachchan.
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
2: Hi guys, I'm Manmeet from the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
3: Hi, this is Salman Khan. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
4: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
5: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Alia.
6: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Brisbane
7: से. To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Shahrukh Khan.
8: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Brisbane.

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता, कल को इमरजेंसी हो जाए तो।
1: तूने ओम्स और असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड।
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
2: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार, हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
3: तो ओम्स ऑर्ग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
2: हाँ लेकिन भरोसा कैसे करूं?
3: अरे ओम्स ऑर्ग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
2: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
3: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
2: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
3: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448381360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470631801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओम्सॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।

क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270355 पर, या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउस और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270355। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270355, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड पीवा देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% पीवा क्रीम से, 99.9% पीवा मिल्क फैट से। और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर। याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

आसान हो। दिल को चुराने वालों आंख न चुराओ, नाम तो बताओ, जान पहचान हो, जीना आसान हो।

जान पहचान हो जीना आसान हो, जान पहचान हो जीना आसान हो, दिल को चुराने वालों आंख न चुराओ, नाम तो बताओ, जान पहचान हो,

इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल DVDs, CDs, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज RaniCreations.com, द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।

बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660

0: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।
2: कंटेनर्स फॉर चेंज के माध्यम से अपने खाली डिब्बे बोतलों से धनराशि कमाएं। आपके प्रत्येक योग्य खाली कैन, बोतल और कार्टन पर 10 सेंट का रिफंड प्राप्त होता है। इसे हम बिन कॉइन कहते हैं। अपने बिन कॉइन की बचत करके रखें, खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें। आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है। बैंक में डालें, ना कि कूड़ेदान में। अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करें।

0: फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी के 132-268 उत्ते कॉल करो। ए सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
1: Earn money from your empty drink containers with Containers for Change. Your empty eligible cans, bottles and cartons receive a 10 cents refund each. We call it bin coin. Save, spend or donate your bin coin to a cause you support. There's a Containers for Change near you. Bank it, don't bin it. Visit the website to find your nearest refund point and start trading for 10 cents today.
2: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
3: तूने ओम्स और असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, CK बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
2: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड।
3: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 844-838-1360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।

कंटेनर्स फॉर चेंज के माध्यम से अपने खाली डिब्बे बोतलों से धनराशि कमाएं। आपके प्रत्येक योग्य खाली कैन बोतल और कार्टन पर 10 सेंट का रिफंड प्राप्त होता है। इसे हम बिन कॉइन कहते हैं। अपने बिन कॉइन की बचत करके रखें, खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें। आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक में डालें ना कि कूड़ेदान में। अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करें।

कंटेनर्स फॉर चेंज राही अपने खाली डब्बिया बोतलों तो कमाई करो। तुहाडे हर एक योग खाली कैन बोतल अते कार्टन उते 10 सेंट दा रिफंड प्राप्त हुंदा है। इसनू असी बिन कॉइन कहिंदे हां। अपने बिन कॉइन नू बचा के रखो, खर्चो जां फिर जिस किसी संस्था जां विषय विच तुहाडा विश्वास है उन्हां नू दान विच दे दिओ। तुहाडे नेड़े एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक विच पाओ ना के कूड़ेदान विच। अपना सब तो नजदीकी रिफंड पॉइंट लभण लई वैबसाइट उते जाओ अते अज ही 10 सेंट कमाउणा शुरू करो।

0: अनुज कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.

0: जा रही हो।
1: गेट रेडी ब्रिस्बेन, आ रहा है साल 2026 का सबसे बड़ा और धमाकेदार फैमिली फेस्टिवल द ग्रैंड मल्टीकल्चरल मेला कार्निवल 2026। शनिवार 13 जून को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ पहुंचिए सुबह बोडा पार्क कुराबी, सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक। एक्सपीरियंस द मैजिक ऑफ यूनिटी कल्चर एंड प्योर सेलिब्रेशन। यहां होंगे इंडोनेशियाई और फिलिपिनो ग्रुप्स के शानदार स्टेज परफॉर्मेंसेस, इंटरनेशनल फूड स्टॉल्स, शॉपिंग, राइड्स और बच्चों के लिए ढेर सारी फन एक्टिविटीज। और हाँ, शाम 6 बजे से सजेगी एक जादुई शाम। लाइव म्यूजिक अंडर द स्टार्स, तरुण रनीगा, रिकी फ्रॉम सिडनी और दिमान रॉय लेकर आ रहे हैं 1.5 घंटे का धमाकेदार बॉलीवुड म्यूजिकल कॉन्सर्ट फुल ऑफ एनर्जी एंड क्लासिकल हिट्स। एंड वेट, रात को आसमान चमकेगा एक अनफॉरगेटेबल फायरवर्क्स डिस्प्ले। सबसे बेस्ट पार्ट, एंट्री इज एब्सोल्युटली फ्री इंक्लूडिंग पार्किंग। तो डायरी में डेट नोट कर लीजिए, सैटरडे जून 13। ज्यादा जानकारी के लिए राज को कॉल करें 0402-651-045 या फरजाना को 0401-428-248 पर। लॉग ऑन टू brisbane.com या melacarnival.com और क्लिक करें इवेंट सेक्शंस पर। डोंट मिस इट।
0: आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जबान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई।
2: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxlade, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.

0: Hi, this is Amitabh Bachchan.
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
2: Hi guys, I'm Manmeet from the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
3: Hi, this is Salman Khan. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
4: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
5: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Alia.
6: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Brisbane
7: से. To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Shahrukh Khan.
8: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Brisbane.
9: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है. सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे. ये तो बहुत अच्छा आइडिया है. मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का.
10: अच्छा, वो क्या?
9: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में.
10: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा.
9: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी. डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें.

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता, कल को इमरजेंसी हो जाए तो।
1: तूने ओम्स और असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाई-अप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो उमसोग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे उमसोग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsog.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई।
2: ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।

0: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270 35 पर, या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270 35। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270 35, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।
1: एक लड़की थी दीवानी सी, एक लड़के पे वो मरती थी, नजरें झुका के शर्मा के गलियों से गुजरती थी, चोरी चोरी चुपके चुपके चिट्ठियां लिखा करती थी। कुछ कहना था शायद उसको, जाने किससे डरती थी। जब भी मिलती थी मुझसे, मुझसे पूछा करती थी, प्यार कैसे होता है, ये प्यार कैसे होता है, और मैं सिर्फ यही कह पाता था।

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

0: जा रही हो।
1: गेट रेडी ब्रिस्बेन, आ रहा है साल 2026 का सबसे बड़ा और धमाकेदार फैमिली फेस्टिवल द ग्रैंड मल्टीकल्चरल मेला कार्निवल 2026। शनिवार 13 जून को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ पहुंचिए सुबह बोडा पार्क कुराबी, सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक। एक्सपीरियंस द मैजिक ऑफ यूनिटी कल्चर एंड प्योर सेलिब्रेशन। यहां होंगे इंडोनेशियाई और फिलिपिनो ग्रुप्स के शानदार स्टेज परफॉर्मेंसेस, इंटरनेशनल फूड स्टॉल्स, शॉपिंग, राइड्स और बच्चों के लिए ढेर सारी फन एक्टिविटीज। और हां, शाम 6 बजे से सजेगी एक जादुई शाम, लाइव म्यूजिक अंडर द स्टार्स। तरुण रनीगा, रिकी फ्रॉम सिडनी और दिमान रॉय लेकर आ रहे हैं 1.5 घंटे का धमाकेदार बॉलीवुड म्यूजिकल कॉन्सर्ट फुल ऑफ एनर्जी एंड क्लासिकल हिट्स। एंड वेट, रात को आसमान चमकेगा एक अनफॉरगेटेबल फायरवर्क्स डिस्प्ले। सबसे बेस्ट पार्ट, एंट्री इज एब्सोल्युटली फ्री इंक्लूडिंग पार्किंग। तो डायरी में डेट नोट कर लीजिए, सैटरडे जून 13। ज्यादा जानकारी के लिए राज राज को कॉल करें 0402-651-045 पर या फरजाना को 0401-428-248 पर। लॉग ऑन टू brisbani.com या melacarnival.com और क्लिक करें इवेंट सेक्शंस पर। डोंट मिस इट।
0: आज

इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल DVDs, CDs, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज RaniCreations.com, द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।

बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरनमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है, मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता। लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660

0: ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाली शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।

फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी के 132-268 उत्ते कॉल करो। ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਕੁਇਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੈ। ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਬਾਈ ਦਾ ਕੁਇਨਜ਼ਲੈਂਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ।

Earn money from your empty drink containers with Containers for Change. Your empty eligible cans, bottles and cartons receive a 10 cents refund each. We call it Bincoin. Save, spend or donate your Bincoin to a cause you support. There's a Containers for Change near you. Bank it, don't bin it. Visit the website to find your nearest refund point and start trading for 10 cents today. Containers for Change के माध्यम से अपने खाली डिब्बे बोतलों से धनराशि कमाएं। आपके प्रत्येक योग्य खाली कैन बोतल और कार्टन पर 10 सेंट का रिफंड प्राप्त होता है। इसे हम बिनकॉइन कहते हैं। अपने बिनकॉइन की बचत करके रखें, खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें। आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक में डालें ना कि कूड़ेदान में। अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करें।

कंटेनर्स फॉर चेंज राहीं अपने खाली डब्बियां बोतलों तो कमाई करो। तुहाडे हर एक योग खाली कैन बोतल अते कार्टन उते 10 सेंट दा रिफंड प्राप्त हुंदा है। इसनू असी बिन कॉइन कहिंदे हां। अपने बिन कॉइन नू बचा के रखो, खर्चो जां फिर जिस किसी संस्था जां विषय विच तुहाडा विश्वास है उन्हां नू दान विच दे दिओ। तुहाडे नेड़े एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक विच पाओ ना के कूड़ेदान विच। अपना सब तो नजदीकी रिफंड पॉइंट लभण लई वैबसाइट उते जाओ अते अज ही 10 सेंट कमाउणा शुरू करो।

0: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
1: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। I actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: Go for the best, Vire. Atul Bhardwaj ji nu ajji contact karo. Ona de kol vast experience aa. Te law di intricacies nu handle karan ch vi o expert han. Criminal law, domestic violence, traffic drug offense vich 12 saal to vadh da rich experience. Te conveyance, family law, immigration laws vich vi Bhardwaj and Associates de lawyers da vast experience aa. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
1: Thanks a ton, Vire. I'm so relaxed to hear that.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
2: Anuj, koi achha sa lawyer suggest karo na. Aisa jo meri sari baat dhang se sune, samjhe, और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
3: अरशाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो, जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
2: अरे वाह, इनका पता बताना।
3: अरशाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अरशाद फ्रॉम अरशाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com. We pride ourselves in providing excellent service.

0: जा रही हो।
1: Get ready Brisbane, आ रहा है साल 2026 का सबसे बड़ा और धमाकेदार फैमिली फेस्टिवल द ग्रैंड मल्टीकल्चरल मेला कार्निवल 2026। शनिवार 13 जून को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ पहुंचिए सुबह बोडा पार्क कुराबी, सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक। एक्सपीरियंस द मैजिक ऑफ यूनिटी कल्चर एंड प्योर सेलिब्रेशन। यहां होंगे इंडोनेशियाई और फिलिपिनो ग्रुप्स के शानदार स्टेज परफॉर्मेंसेस, इंटरनेशनल फूड स्टॉल्स, शॉपिंग, राइड्स और बच्चों के लिए ढेर सारी फन एक्टिविटीज। और हाँ, शाम 6 बजे से सजेगी एक जादुई शाम। लाइव म्यूजिक अंडर द स्टार्स, तरुण रनीगा, रिकी फ्रॉम सिडनी और दिमान रॉय लेकर आ रहे हैं 1.5 घंटे का धमाकेदार बॉलीवुड म्यूजिकल कॉन्सर्ट फुल ऑफ एनर्जी एंड क्लासिकल हिट्स। एंड वेट, रात को आसमान चमकेगा एक अनफॉरगेटेबल फायरवर्क्स डिस्प्ले। सबसे बेस्ट पार्ट, एंट्री इज एब्सोल्युटली फ्री इंक्लूडिंग पार्किंग। तो डायरी में डेट नोट कर लीजिए, सैटरडे जून 13। ज्यादा जानकारी के लिए राज को कॉल करें 0402-651-045 पर या फरजाना को 0401-428-248 पर। लॉग ऑन टू brisbane.com या मेला कार्निवल.com और क्लिक करें इवेंट सेक्शंस पर। डोंट मिस इट।

इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज ranicreations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

दुनिया के किसी भी कोने में रहा, तुमसे कितना भी फासला रहा, यकीन मानो बचपन से आज तक हर पल हर मोड़ तुम्हें साथ पाया। समझ नहीं आता इस रिश्ते को क्या कहूं। यार तुम कहो तो आज इसे एक नाम दूं।

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता, कल को इमरजेंसी हो जाए तो।
1: तूने ओम्स और असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाई-अप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सी के बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
2: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार, हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
3: तो ओम्स ऑर्ग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
2: हाँ लेकिन भरोसा कैसे करूं?
3: अरे ओम्स ऑर्ग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
2: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
3: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
2: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
3: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448381360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470631801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओम्सॉग, केयरिंग विद डिग्निटी।

क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270 35 पर, या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउस और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270 35। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270 35, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, ये प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
4: दुनिया के किसी भी कोने में रहा, तुमसे कितना भी फासला रहा, यकीन मानो बचपन से आज तक हर पल हर मोड़ तुम्हें साथ पाया। समझ नहीं आता इस रिश्ते को क्या कहूं। यार तुम कहो तो आज इसे एक नाम दूं।

मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे ये सभी दिन जरूरी हैं जिंदगी में, लेकिन सैटरडे और संडे तो जिंदगी के मजेदार दिनों में शुमार होने चाहिए। मेरा बस चले तो इन्हें वीकेंड के बेस्ट डेज डिक्लेयर करवा दूं, क्योंकि ये वो दिन हैं जब हम एक तो पूरे हफ्ते इनका इंतजार करते हैं, दूसरे इनके आने पर हम बहुत खुश हो जाते हैं, और तीसरे ये इतने कीमती है हमारी जिंदगी में कि आते ही गायब हो जाते हैं, है ना। लेकिन फिर भी जो लम्हे हम पकड़ सकते हैं जिंदगी के, जिनके साथ हम एंजॉय कर सकते हैं, जिन्हें हम जी सकते हैं, तो वो तो हम जी ही सकते हैं। तो चलिए आज ऐसे ही कुछ लम्हों को आपके वीकेंड्स पर आपके लिए चुरा कर लाए हैं रेडियो प्रिस्वानी 107.1 AM के साथ हमारे सफर सैटरडे डिलाइट में। जी हाँ, आज एक बार फिर से आपको करेंगे रिफ्रेश, मिटाएंगे आपकी थकान और आपको सुनवाएंगे सुकून से भरे कुछ खास नगमे। आइए फिलहाल अपने सफर की शुरुआत करते हैं इस अगले ट्रैक के साथ। सुनते रहिए सताक्ष के साथ सैटरडे डिलाइट सिर्फ और सिर्फ रेडियो प्रिस्वानी 107.1 AM पर।

वेलकम बैक। सैटरडे को एंजॉय कर रहे हैं आप सैटरडे डिलाइट में रेडियो ब्रिस्वानी 107.1 पर। आज सैटरडे डिलाइट की शुरुआत में आपसे एक सवाल करना है, आपको क्या ज्यादा पसंद है, वीकेंड पर आपके घर गेस्ट आए या फिर आप गेस्ट बनकर दूसरों के घर जाएं, क्या ज्यादा मजा देता है? नहीं, मैं ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ज्यादातर लोग तो कहेंगे भाई दूसरों के घर जाना, अपने घर का काम कौन बढ़ाए, लेकिन कुछ लोग होते हैं जिन्हें कुकिंग का बड़ा शौक होता है, लोगों को रिसीव करने का, उनके साथ बातें करने का, या अपना जो मेहमान नवाजी है वो उनको दिखाने का कि कैसे आप उन्हें ट्रीट करते हैं, ये दिखाने में उनको बड़ा ही मजा आता है, उन्हें बड़ा शौक होता है कि वो अपने हाथ का बना खाना लोगों को खिलाएं। तो इसलिए अच्छा, कुछ लोग ना तीसरे किस्म के होते हैं जिन्हें ना तो कहीं आना पसंद है, ना कहीं जाना पसंद है, ना कोई आए उनके घर, और वो मजे से सोएं और आराम करें, वो अपने में ही मस्त मौला इंसान होते हैं। हाँ, तो तीन कैटेगरी हो गई बेसिकली कि आपको कौन सी वाली पसंद है। भाई आप गेस्ट बन के किसी के घर जाएं या कोई आपके घर गेस्ट बन के आए, या फिर आप दोनों से ही बचना चाहते हैं और अपने वीकेंड्स को अपने साथ गुजारना चाहते हैं। शेयर कीजिए मेरे साथ अभी इसी वक्त सिर्फ और सिर्फ रेडियो ब्रिस्वानी पर आपके अपने शो वीकेंड वाले शो सैटरडे लाइट में। फिलहाल मैं प्ले करती हूँ आपके लिए अगला ट्रैक, स्टे ट्यून्ड रेडियो ब्रिस्वानी।

वेलकम बैक सैटरडे डिलाइट के एक और साथ एक और सफर में सताक्षी के साथ हैं आप। जी हाँ, हम जानते हैं कि भाई ये जो वीकेंड्स हैं ये आपको थोड़ी सी थकान में राहत देने के लिए आते हैं, आप का स्ट्रेस कम करने के लिए आते हैं और एक अच्छा क्वालिटी टाइम आप अपनों के साथ स्पेंड कर सकें इसलिए आते हैं। तो चलिए इन वीकेंड्स को ही आपके लिए और खास बनाते हैं। एक और ट्रैक सुनिए हमारे साथ और यूं ही सुनते रहिए सैटरडे डिलाइट रेडियो प्रेस वाणी 107.01।

वीकेंड आने पर आप इस बात के लिए तो तैयार रहते हैं दोस्तों कि आप अपनी थकान को उतारेंगे, लेकिन कभी कभी थकान काम की नहीं होती है, कभी कभी थकान एहसासों की होती है, रिश्तों के भारीपन की होती है। वो छोटे छोटे से आर्ग्यूमेंट्स कभी कभी दिल पर इतना गहरा भारीपन डाल देते हैं कि आप पूरे हफ्ते के लिए, पूरे महीने के लिए दिल से भारी हो जाते हैं। आपको थका हुआ लगता है, बॉडी दिमाग सब कुछ थका हुआ लगता है। दिल नहीं करता कि किसी से कोई बात करी जाए, दिल नहीं करता कि किसी के साथ कोई एहसास शेयर किया जाए, बस दिल चुपचाप बैठने को करता है, चुपचाप अपने साथ रहने को करता है ना। और इसलिए बहुत जरूरी है, खासकर रिश्तों में, कि अगर आप देखें आपके साथ जो बंदा है, क्या वाकई वो अपने काम का थका हुआ है, या उसके अंदर एहसास ऐसे हैं आपको लेकर, घर को लेकर, जिम्मेदारियों को लेकर, जो उसको थका रहे हैं। आइए इस बात पर एक और ट्रैक सुनिए इस वीकेंड हमारे साथ, और सुनते रहिए सैटरडे डिलाइट ओनली ऑन रेडियो ब्रिस्वानी।

0: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल DVDs, CDs, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज RaniCreations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।
1: सदाक्षी के साथ सैटरडे का खूबसूरत और बेहतरीन साथ। आपके वीकेंड्स पर हमारा साथ आप अपने साथ सुन रहे हैं रेडियो प्रस्वानी पर, और इस वीकेंड्स आपको कुछ बहुत ही प्यारे और गहरे रंगों के साथ, प्यार के, मोहब्बत के, इश्क के रंगों के साथ हम रंग रहे हैं। एक और ट्रैक के साथ फिलहाल आपको आगे लेकर चल रही हूँ, इसे सुनिए और इस ट्रैक के साथ सुनते रहिए रेडियो प्रस्वानी और रहिए सदाक्षी के साथ।

अच्छा, जब वीकेंड्स होता है तो हस्बैंड वाइफ दोनों छुट्टी पर होते हैं, दोनों के पास वक्त होता है एक दूसरे के लिए। देखा जाए तो अगर सिर्फ बीवियों की बात करें, आपकी होम मेकर्स की बात करें, तो वो पूरे हफ्ते काम करती हैं, आपका लंच, आपका ब्रेकफास्ट, आपका टिफिन, सब कुछ, और आपका डिनर, सब कुछ। यहाँ तक कि जो आपके फिटनेस की चीजें हैं उनका भी वो ख्याल रखती हैं, आपके रूटीन की हर छोटी बड़ी जिम्मेदारी उनके पास होती है। और आज का वक्त ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ घर में रहती है, भाई किसी ना किसी नजरिए से वो बाहर के भी हजारों काम संभाल रही है, अपने करियर को सबसे इंपॉर्टेंट संभाल रही है। उसके बाद भी वो आपसे कोई शिकायत नहीं करती, लेकिन जब वीकेंड्स हैं तो कम से कम मेल मेंबर्स से हम ये एक्सपेक्ट करेंगे और इनसे रिक्वेस्ट भी करेंगे कि भाई अपनी वाइफ के साथ जाकर किचन में जरा हाथ बटाएं और देखें कि कितनी मेहनत लगती है उन कामों को करने में जो अकेला वो कर सकती हैं या करती रही हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि अगर आप कर सकते हैं तो आप उस दिन उन्हें रेस्ट दें कि भाई आज आप किचन संभालेंगे। और ऐसा नहीं है, देखिएगा, कि वो आपको छोड़कर चली जाएंगी कि भाई अब आप संभालो हम चले आज सोने, नहीं, वो आपके साथ रहेंगी और फिर एक हंसी मजाक का दौर जो है वो चलेगा। रिश्ते बड़े बड़े कामों से नहीं संभलते हैं, रिश्ते कभी कभी छोटी छोटी सी परवाह से बहुत खूबसूरत हो जाते हैं। और ऐसे ही रिश्तों के नाम फिलहाल ये अगला ट्रैक प्ले कर रही हूँ, इसे एंजॉय कीजिए और आपकी सताक्षी के साथ सुनते रहिए सैटरडे डिलाइट ओनली ऑन रेडियो ब्रिस्वानी।

0: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।
1: का ये बहुत ही खूबसूरत और प्यारा सा साथ आप एंजॉय कर रहे हैं इस वक्त रेडियो प्रस्वानी पर। आपके वीकेंड्स को आपके लिए बहुत ही स्पेशल और खास बना रहे हैं हम, क्योंकि हम जानते हैं कि आपका एक लगाव है, एक जुड़ाव है इस सफर से, क्योंकि आपको ये सफर एकदम लाइट कर देता है। तो वो लाइटनेस जो है, वो जो जिंदगी के हसीन पल हैं, उनकी जो पावर है, वो इस गाने के उस पार भी जारी रहेगी। मुझे एंजॉय करते रहिए और एंजॉय करते रहिए सैटरडे डिलाइट आपके अपने रेडियो प्रस्वानी पर।

वीकेंड्स पर जब हम होते हैं तो कुछ लोग होते हैं ना जो हमारे वीकेंड्स को देखकर हमारे आसपास आते हैं, मतलब आज तो इस बंदे की छुट्टी होगी, चलो इसका दिमाग खाया जाए, ऐसे वाले लोगों की बात कर रही हूँ मैं। और आप घबरा जाते हैं, आपको लगता है कि यार ये बंदा आ गया तो मेरा सारा जो मूड है वो स्पॉइल हो जाएगा, मेरी शांति खराब हो जाएगी। तो यस, आप अपनी शांति को खुद बचाइए, क्योंकि दुनिया आपको शांति देने वाली नहीं है। आपका वीकेंड हो, कोई त्योहार हो, कुछ भी हो, दुनिया आपको शांति नहीं देने वाली। वो शांति आपको अपने अंदर खुद बचानी पड़ेगी। जब भी कोई सामने से ऐसे आए तो जाकर सो जाइए, कह दीजिए कि मेरा बाहर निकलने का वक्त है, मुझे तो अर्जेंटली बाहर जाना है, मुझे पेट में दर्द हो रहा है यार बहुत जोर से, मैं तुम्हारे साथ नहीं बैठ सकता। आप इस बात को पूरी तरह से समझ लीजिए कि ये आया है मेरे साथ बहस करने के लिए, मेरे अंदर नेगेटिविटी भरने के लिए, मेरी शांति छीनने के लिए। देखिए, गलत जगह जाकर अगर आप गलत चीज खोजेंगे, आपको लगेगा कि ये लोग आपको मेंटल पीस दे सकते हैं, तो गलती साफ तौर पर आपकी है। अब आप सुनार की दुकान पर, आप ज्वेलर की दुकान पर जाके अगर आप वेजिटेबल्स परचेज करने जाएंगे तो क्या आपको मिलने वाली है? बिल्कुल भी नहीं ना। तो इसलिए खुद का ख्याल रखिए, खुद के इमोशंस का ख्याल रखिए, स्पेशली अपने वीकेंड्स पे, क्योंकि वीकेंड्स आपको रिफ्रेश करने के लिए आते हैं भाई, ऐसे लोगों के साथ बैठकर गॉसिप करने के लिए, नहीं ताकि आप और लो फील करने लगे। आइए, आपको आगे लेकर चल रही है एक और ट्रैक, सुनिए मेरे साथ और सुनते रहिए सैटरडे डिलाइट रेडियो प्रस्थानी 107.01 एम पर।

0: Excuse me, may I? Some matches are made in heaven and some are made at weddings. Every wedding is special. Think weddings, think Roy Singh. From the grand ballroom to your childhood backyard to a faraway beach, the big day comes in all sizes and styles, and that is why I'm proud that you have trusted me with your civil wedding, and I cannot wait to help you create yours. Contact me, Roy Singh, today on 0411-022-602, 0411-022-602, or email me at roylindrasingh@gmail.com. Think weddings, think Roy Singh.
1: Saturday Delight, आप सुन रहे हैं सताक्षी के साथ रीजु प्रस्वानी 1701 AM पर, और Saturday Delight में आपके साथ कुछ बहुत ही प्यारी और बेहतरीन बातें, क्योंकि हम जानते हैं कि भाई ये सैटरडे का साथ जो है ये आपके लिए बहुत ही खास है. आप भी सताक्षी का इंतजार करते हैं कि कब आपके साथ कुछ गहरी गुफ्तगू मेरी हो, है ना. तो चलिए एक और गहरे गाने को सुनते हैं और उसके बाद अपनी बातों का सिलसिला जो है वो आपके साथ जारी रखेंगे. कीप लिसनिंग टू रीजु प्रस्वानी और सुनते रहिए सताक्षी के साथ Saturday Delight.

जिंदगी में सब लोग सक्सेस चाहते हैं, सब लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, पर बहुत कम लोग समझते हैं कि सक्सेस का एक सीक्रेट होता है, रियल सीक्रेट। लोग टैलेंट की बात करते हैं, लक की बात करते हैं, मोटिवेशन की बात करते हैं, पर एक चीज जो सबसे पावरफुल है वो है डिसिप्लिन। जी हाँ, डिसिप्लिन। टैलेंट आपको शुरू करता है पर डिसिप्लिन आपको फिनिश करता है। अगर आप डिसिप्लिन से कोई भी काम करते हैं तो नेचुरली आप अपने गोल तक, अपने अपने पावर के दम पर, अपने टैलेंट के दम पर आप पहुंच पाते हैं। इसलिए इस वीकेंड खुद से एक वादा जरूर कीजिए कि आप अपने वीकेंड्स पर खुद को रेडी करेंगे डिसिप्लिन के साथ, है ना। और डिसिप्लिन ये कहता है कि मैं फिटनेस से आपका वीकेंड शुरू हो। क्यों कह रही हूँ? क्योंकि वीकेंड के साथ ही तो आज की नई आदत, नई हैबिट जो है वो आप में डेवलप होगी। आइए एक और ट्रैक सताक्षी के साथ सुनिए, और सुनते रहिए सैटरडे डिलाइट रेडियो प्रस्वानी 1701 AM पर।

0: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660।
1: जी हाँ, सैटरडे पर ये एक और बेहतरीन साथ सताक्षी के साथ आप सुन रहे हैं रेडियो प्रस्वानी पर, और इस साथ के साथ आपके साथ कुछ गहरी और प्यार भरी बातों का हमारा आपका ये जो साथ है ये आगे चल रहा है। फिलहाल एक और ट्रैक आपके लिए प्ले करने जा रही हूँ। Keep listening to Radio Prasthani.

दोस्तों रिश्ते हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और मैं कहती हूँ कि अपने रिश्तों को ना अपने वीकेंड्स पर ज़रूर वक्त दीजिए। फिर चाहे वो आपके पार्टनर के साथ आपका रिश्ता हो, आपके पेरेंट्स के साथ हो, आपके सिबलिंग्स के साथ हो, या फिर हो आपके रिलेटिव्स और फ्रेंड्स के साथ। रिश्ते सिर्फ एक वर्ड नहीं है, बल्कि एहसासों से चलने वाले बहुत ही प्यारे बंधन हैं जो आपके साथ जुड़े हैं। हर इंसान अपनी फीलिंग्स खुलकर नहीं कह पाता है, उसके दिल में बहुत कुछ बोलता है। असली समझ वहीं से शुरू होती है जहां बोलने से ज्यादा महसूस करना सीख लेते हैं। कई बार आपका पार्टनर चुप रहता है, कम बोलता है, या फिर पहले जैसा खुश नहीं दिखता। ये चुप्पी खाली नहीं होती है, इसके पीछे थकान, परेशानी या फिर कोई अंदरूनी दर्द हो सकता है। ऐसे समय पर सवालों की जगह उसका हाथ थाम लेना, बस ये कहना मैं तुम्हारे साथ हूँ, बहुत सुकून देता है। और इस सुकून को आप रोज ना कह पाए ना सही, सामने वाला रोज ना पढ़ पाए ना सही, पर आपके वीकेंड्स में ये सुकून जो है, ये उन एहसासों के साथ, उन बातों के साथ जरूर आपके साथ होना चाहिए। फिलहाल एक और ट्रैक को सताक्षी के साथ सुनिए, और यूं ही सुनते रहिए सैटरडे डिलाइट आपके अपने रेडियो प्रस्वानी 1701 AM पर।

0: हनी ये तुम कहाँ ले जा रही हो, ये ग्रोसरी पास वाली शॉप से ले सकते हैं ना।
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।
2: सैटरडे का खास साथ, सैटरडे डिलाइट आप एंजॉय कर रहे हैं रेडियो ब्रिस्बेन 1701 पर। जी हां, हो रही है सफर में आपके साथ हमारी और आपकी कुछ खास और बेहतरीन बातें। दोस्तों, के कुछ पल इतने बेहतरीन होते हैं कि हम चाहते हैं कि वो थोड़े से लंबे होते जाएं। लेकिन छुट्टियां जब होती हैं और खासकर जब जिंदगी में वीकेंड्स आते हैं तो हम समझ ही नहीं पाते कि ये कब खत्म हो गए। आने से पहले जितनी बेसब्री से, जितनी बेताबी से इनका इंतजार रहता है। संडे को हम यही कहते हैं कि यार कल फिर से वही रूटीन है ना। आपके साथ भी ऐसा होता है क्या? अगर होता है तो मेरे साथ शेयर कीजिए, क्योंकि मेरे साथ तो बहुत होता है, इवन हर हफ्ते होता है। और आप भी अपने व्यूज जरूर बताइए मुझे रेडियो ब्रिस्बेन के फेसबुक पेज पर। फिलहाल आगे बढ़ते हैं एक और गाने के साथ। एंजॉय कीजिए और सुनते रहिए सैटरडे डिलाइट आपकी सताक्षी के साथ।

वैसे एक सवाल करना था आपसे। जी हाँ, यूं तो आप जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि फ्री होते नहीं है, लेकिन वीकेंड्स पे फ्री होते हैं। तो भाई मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए कि हम पानी पीते क्यों हैं? बताइए बताइए, हम पानी क्यों पीते हैं? क्योंकि प्यास लगती है? नहीं, ये तो जवाब नहीं हुआ ना भाई। क्योंकि हम पानी खा नहीं सकते, इसीलिए तो हम पानी पीते हैं। दोस्तों, जिंदगी ऐसी पागलपंती से भरी होनी चाहिए। जितनी ज्यादा ऐसी बातों से भरी रहेगी ना, पागलपंती वाली, उतना ही ज्यादा आप जिंदगी को एंजॉय कर पाएंगे, उतना ही ज्यादा आप जिंदगी को जी पाएंगे और सेलिब्रेट कर पाएंगे, है ना। आइए इसी सेलिब्रेशन के नाम एंजॉय कीजिए मेरे साथ ही अगला ट्रैक, एंड स्टे ट्यून्ड रेडियो प्रस्थानी 107.01 FM।

0: फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी के 132-268 उते कॉल करो। ए सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है, ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट।
1: कभी कभी ना मुझे यूट्यूब से शिकायत करने का बहुत मन होता है दोस्तों, क्यों? अब देख
0: फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी के 132-268 उते कॉल करो। ए सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है, ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट।
1: कभी कभी ना मुझे यूट्यूब से शिकायत करने का बहुत मन होता है दोस्तों, क्यों? अब देखिए ना, मतलब ये यूट्यूब जो है, इस

इसको डिस्टर्ब करते हैं, आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं थोड़ी देर के लिए। भाई मेरा यूट्यूब से ये कम्प्लेन है कि ठीक है पिक्चरों के बीच में आप एक बार ये एड दिखा दीजिए, लेकिन सैड सॉन्ग्स मतलब दिल टूटा हुआ है हमारा, सदमा हमें लगा हुआ है और ये यूट्यूब है कि इससे अपनी कमाई की पड़ी है, तो ये कैसे टॉलरेट किया जाए, नहीं किया जाएगा ना। इसीलिए मैं तो सोच रही हूँ मैं यूट्यूब के हेड को एक लेटर लिखूं, एक मेल भेजूं और उनको बोलूं कि भाई ये सैड सॉन्ग के बीच में कम से कम एडवर्टीजमेंट मत लगाया कीजिए, हमारे दिल की, हमारे टूटे दिल की थोड़ी तो परवाह कीजिए, आप अरिजीत सिंह को सुन रहे हैं और आपने अपनी कमाई शुरू कर दी, गलत बात है भाई, है ना। हाँ तो चलिए आप भी एक मेल डाल ही दीजिए, मेरे साथ डालेंगे तो थोड़ा ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा ना, सताक्षी के साथ आया आपका मेल तो डाल दीजिए। फिलहाल चलिए एक गाने के साथ आगे बढ़ते हैं, स्टे ट्यून्ड रेडियो प्रस्वानी, सताक्षी के साथ है आप।

ये था आज का सैटरडे डिलाइट पर सताक्षी के साथ आपका एक और साथ। दोस्तों आज हमने फिर से अपने वीकेंड को, इनफैक्ट आपके खासकर वीकेंड को, क्योंकि हम जानते हैं आप पूरे हफ्ते बहुत थक जाते हैं, तो हम पूरी कोशिश करते हैं कि भाई हम अपनी तरफ से जो कर सकते हैं, जो सुकून दे सकते हैं, जो गाने सुनवा सकते हैं, उनके जरिए हम आपको थोड़ा सा रिलैक्स कर दें। तो यही कोशिश आज मेरी थी, जो फिर से सक्सेसफुल जरूर हुई होगी मुझे पूरी उम्मीद है। और अगले हफ्ते, अगले वीकेंड कुछ और बातों के साथ, गीतों के साथ फिर से मिलूंगी। हाँ, कल आपके वीकेंड पे फरमाइशी गीतों के साथ भी मिल रही हूँ आपको, तो हाँ अपनी रिक्वेस्ट जरूर मुझे भेजते रहिए और बताते रहिए कि फरमाइशी गीतों में आप कौन से गाने सुनना चाहते हैं। कल मिलती हूँ, फिलहाल आज के सफर से दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: कंटेनर्स फॉर चेंज के माध्यम से अपने खाली डिब्बे बोतलों से धनराशि कमाएं। आपके प्रत्येक योग्य खाली कैन बोतल और कार्टन पर 10 सेंट का रिफंड प्राप्त होता है। इसे हम बिन कॉइन कहते हैं। अपने बिन कॉइन की बचत करके रखें, खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें। आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक में डालें ना कि कूड़ेदान में। अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करें।
1: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
2: तो उमसॉग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
1: हाँ लेकिन भरोसा कैसे करूं?
2: अरे उमसॉग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
1: अच्छा मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
2: बिल्कुल, खाना दवाई हेल्थ चेक सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
1: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
2: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई।
3: ओमसॉग, केयरिंग विद डिग्निटी।

कंटेनर्स फॉर चेंज राही अपने खाली डब्बिया बोतलों तो कमाई करो। तुहाडे हर एक योग खाली कैन बोतल अते कार्टन उते 10 सेंट दा रिफंड प्राप्त हुंदा है। इसनू असी बिन क्वाइन कहंदे हां। अपने बिन क्वाइन नू बचा के रखो, खर्चो जां फिर जिस किसे संस्था जां विषय विच तुहाडा विश्वास है उन्हां नू दान विच दे दिओ। तुहाडे नेड़े एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक विच पाओ ना के कूड़ेदान विच। अपना सब तो नजदीकी रिफंड पॉइंट लभण लई वैबसाइट उते जाओ अते अज ही 10 सेंट कमाउणा शुरू करो।

0: अनुज कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5-1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.
2: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
3: यार, I'm so worried. Actually, want an experienced lawyer to handle my case.
2: मेरी advice है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का vast experience है और law की entry cases को handle करने में उनकी expertise है. Criminal law, domestic offence, traffic drug offence में 12 साल से ज्यादा का rich experience. और तो और conveyance, family law, immigration laws में भी भारद्वाज एंड associates के lawyers का vast experience है. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
3: Thanks, Ataniyar. I'm so relaxed to hear that.
2: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: रही हूँ।
1: गेट रेडी ब्रिस्बेन, आ रहा है साल 2026 का सबसे बड़ा और धमाकेदार फैमिली फेस्टिवल, द ग्रैंड मल्टीकल्चरल मेला कार्निवल 2026। शनिवार 13 जून को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ पहुंचिए सुबह बोडा पार्क कुराबी, सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक। एक्सपीरियंस द मैजिक ऑफ यूनिटी, कल्चर एंड प्योर सेलिब्रेशन। यहां होंगे इंडोनेशियाई और फिलिपिनो ग्रुप्स के शानदार स्टेज परफॉर्मेंसेस, इंटरनेशनल फूड स्टॉल्स, शॉपिंग, राइड्स और बच्चों के लिए ढेर सारी फन एक्टिविटीज। और हाँ, शाम 6 बजे से सजेगी एक जादुई शाम, लाइव म्यूजिक अंडर द स्टार्स, तरुण रनिगा, रिकी फ्रॉम सिडनी और दिमान रॉय लेकर आ रहे हैं 1.5 घंटे का धमाकेदार बॉलीवुड म्यूजिकल कॉन्सर्ट फुल ऑफ एनर्जी एंड क्लासिकल हिट्स। एंड वेट, रात को आसमान चमकेगा एक अनफॉरगेटेबल फायरवर्क्स डिस्प्ले। सबसे बेस्ट पार्ट, एंट्री इज एब्सोल्युटली फ्री इंक्लूडिंग पार्किंग। तो डायरी में डेट नोट कर लीजिए, सैटरडे जून 13। ज्यादा जानकारी के लिए राज को कॉल करें 0402-651-045 पर या फरजाना को 0401-428-248 पर। लॉग ऑन टू brisbani.com या melacarnival.com और क्लिक करें इवेंट सेक्शंस पर। डोंट मिस इट।
0: आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जबान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई।
2: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउस और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035 या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। For best service, complete legal paperwork, marriage certificate and a memorable marriage ceremony, remember the name Parmanand, your professional and friendly civil marriage celebrant since 2003.

एक लड़की थी दीवानी सी, एक लड़के पे वो मरती थी, नजरें झुका के शर्मा के गलियों से गुजरती थी, चोरी चोरी चुपके चुपके चिट्ठियां लिखा करती थी, कुछ कहना था शायद उसको, जाने किससे डरती थी। जब भी मिलती थी मुझसे, मुझसे पूछा करती थी, प्यार कैसे होता है, ये प्यार कैसे होता है, और मैं सिर्फ यही कह पाता था।

0: Hi, this is Amitabh Bachchan.
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
2: Hi guys, I'm Manmeet, one of the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
3: Hi, this is Salman Khan. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
4: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
5: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Alia.
6: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Briswani से.
7: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Shahrukh Khan.
8: Hi, this is Ajay Devgan
9: और आप सुन रहे हैं Radio Briswani.

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता, कल को इमरजेंसी हो जाए तो।
1: तूने ओम्सऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
1: बिल्कुल, ओम्सऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्सऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्सऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
2: अर्न मनी फ्रॉम योर एम्प्टी ड्रिंक कंटेनर्स विद कंटेनर्स फॉर चेंज। योर एम्प्टी एलिजिबल कैंस, बॉटल्स एंड कार्टन्स रिसीव अ 10 सेंट्स रिफंड ईच। वी कॉल इट बिन कॉइन। Save, spend, or donate your bin coin to a cause you support. There's a Containers for Change near you. Bank it, don't bin it. Visit the website to find your nearest refund point and start trading for 10 cents today.

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो उमसॉग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे उमसॉग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई।
2: ओमसॉग, केयरिंग विद डिग्निटी।

0: है मेरी हमराज, मुझको थाम ले, जिंदगी से भाग कर आया हूं।
1: बारिश हो रही है, ये बारिश ना होती तो भी ना आती।

क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउस और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035 या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड पीवा देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% पीवा क्रीम से, 99.9% पीवा मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल DVDs, CDs, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्टवेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशन विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा। ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज RaniCreations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।

फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज ranicreations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी, सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।

बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरनमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660

0: ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।

फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी कि 132-268 उत्ते कॉल करो। ए सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता, कल को इमरजेंसी हो जाए तो।
1: तूने ओम्स और असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली, मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड।
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए, ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in, व्हाट्सएप या कॉल कीजिए, इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।

0: कंटेनर्स फॉर चेंज के माध्यम से अपने खाली डिब्बे बोतलों से धनराशि कमाएं। आपके प्रत्येक योग्य खाली कैन बोतल और कार्टन पर 10 सेंट का रिफंड प्राप्त होता है। इसे हम बिन कॉइन कहते हैं। अपने बिन कॉइन की बचत करके रखें, खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें। आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक में डालें ना कि कूड़ेदान में। अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करें।
1: कंटेनर्स फॉर चेंज राही अपने खाली डब्बिया बोतलों तो कमाई करो। तुहाडे हर एक योग खाली कैन बोतल अते कार्टन उते 10 सेंट दा रिफंड प्राप्त हुंदा है। इस नू असी बिन कॉइन कहंदे हां। अपने बिन कॉइन नू बचा के रखो, खर्चो जां फिर जिस किसी संस्था जां विषय विच तुहाडा विश्वास है उन्हां नू दान विच दे दियो। तुहाडे नेड़े एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक विच पाओ ना के कूड़ेदान विच। अपना सब तो नजदीकी रिफंड पॉइंट लभण लई वेबसाइट उते जाओ अते अज ही 10 सेंट कमाना शुरू करो।

0: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो, जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी एडवाइस है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
1: थैंक्स अटनिया, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

जान पहचान हो जीना आसान हो, जान पहचान हो जीना आसान हो, दिल को चुराने वालों आंख न चुराओ, नाम तो बताओ, जान पहचान हो।

आसान हो। दिल को चुराने वालों आंख न चुराओ, नाम तो बताओ, जान पहचान हो, जीना आसान हो।

0: रही हो।
1: गेट रेडी ब्रिस्बेन, आ रहा है साल 2026 का सबसे बड़ा और धमाकेदार फैमिली फेस्टिवल द ग्रैंड मल्टीकल्चरल मेला कार्निवल 2026। शनिवार 13 जून को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ पहुंचिए सुबह बोडा पार्क कुराबी, सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक। एक्सपीरियंस द मैजिक ऑफ यूनिटी कल्चर एंड प्योर सेलिब्रेशन। यहां होंगे इंडोनेशियाई और फिलिपिनो ग्रुप्स के शानदार स्टेज परफॉर्मेंसेस, इंटरनेशनल फूड स्टॉल्स, शॉपिंग, राइड्स और बच्चों के लिए ढेर सारी फन एक्टिविटीज। और हां, शाम 6 बजे से सजेगी एक जादुई शाम, लाइव म्यूजिक अंडर द स्टार्स, तरुण रनीगा, रिकी फ्रॉम सिडनी और दिमान रॉय लेकर आ रहे हैं 1.5 घंटे का धमाकेदार बॉलीवुड म्यूजिकल कॉन्सर्ट फुल ऑफ एनर्जी एंड क्लासिकल हिट्स। एंड वेट, रात को आसमान चमकेगा एक अनफॉरगेटेबल फायरवर्क्स डिस्प्ले। सबसे बेस्ट पार्क, एंट्री इज एब्सोल्युटली फ्री इंक्लूडिंग पार्किंग। तो डायरी में डेट नोट कर लीजिए, सैटरडे जून 13। ज्यादा जानकारी के लिए राज राज को कॉल करें 0402-651-045 पर या फरजाना को 0401-428-248 पर। लॉग ऑन टू brisbani.com या melacarnival.com और क्लिक करें इवेंट सेक्शंस पर। डोंट मिस इट।
0: आज क

दुनिया के किसी भी कोने में रहा, तुमसे कितना भी फासला रहा, यकीन मानो बचपन से आज तक हर पल हर मोड़ तुम्हें साथ पाया। समझ नहीं आता इस रिश्ते को क्या कहूं यार, तुम कहो तो आज इसे एक नाम दूंगा।

0: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more, and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.
1: Hi, this is Amitabh Bachchan.
2: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
3: Hi guys, I'm Manmeet from the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
4: Hi, this is Salman Khan.
5: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
6: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
7: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Alia.
8: Hi, मैं हूँ Tulsi Kumar. और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
9: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Shahrukh Khan.
10: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
11: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है, सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
12: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
11: अच्छा, वो क्या?
12: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
11: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
12: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता, कल को इमरजेंसी हो जाए तो।
1: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए, ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in, व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो उमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे उमसॉर्ग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।

0: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270 पर, या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउस और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270 रिमेम्बर द नंबर इज 04111270, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।
1: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है, सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
2: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
1: अच्छा, वो क्या?
2: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
1: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
2: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन, au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड पीवा देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% पीवा क्रीम से, 99.9% पीवा मिल्क फैट से। और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर। याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

कंटेनर्स फॉर चेंज के माध्यम से अपने खाली डिब्बे बोतलों से धनराशि कमाएं। आपके प्रत्येक योग्य खाली कैन बोतल और कार्टन पर 10 सेंट का रिफंड प्राप्त होता है। इसे हम बिन कॉइन कहते हैं। अपने बिन कॉइन की बचत करके रखें, खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें। आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक में डालें न कि कूड़ेदान में। अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करें।

फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज ranicreations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी, सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।

बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। प्री सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरनमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। प्री सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है, मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता। लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करे प्रकाश मेनन को फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660।

वहमो गुमान से दूर दूर, यकीन की हद के पास पास, दिल को भरम ये हो गया उनको हमसे प्यार है।

0: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।

0: फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी कि 132-268 उत्ते कॉल करो। यह सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
1: Earn money from your empty drink containers with Containers for Change. Your empty eligible cans, bottles and cartons receive a 10 cents refund each. We call it bin coin. Save, spend or donate your bin coin to a cause you support. There's a Containers for Change near you. Bank it, don't bin it. Visit the website to find your nearest refund point and start trading for 10 cents today.

0: कंटेनर्स फॉर चेंज के माध्यम से अपने खाली डिब्बे बोतलों से धनराशि कमाएं। आपके प्रत्येक योग्य खाली कैन बोतल और कार्टन पर 10 सेंट का रिफंड प्राप्त होता है। इसे हम बिन कॉइन कहते हैं। अपने बिन कॉइन की बचत करके रखें, खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें। आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक में डालें ना कि कूड़ेदान में। अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करें।
1: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
2: अरशाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
1: अरे वाह, इनका पता बताना।
2: अरशाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अरशाद फ्रॉम अरशाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.

0: कहानी बुरी नहीं थी इश्क की मेरे, बस तेरे जैसे कुछ किरदार धोखेबाज निकले।
1: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है, मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660

कंटेनर्स फॉर चेंज राहीं अपने खाली डब्बियां बोतलां तों कमाई करो। तुहाडे हर एक योग खाली कैन बोतल अते कार्टन उते 10 सेंट दा रिफंड प्राप्त हुंदा है। इस नूं असी बिन कॉइन कहिंदे हां। अपने बिन कॉइन नूं बचा के रखो, खर्चो जां फिर जिस किसे संस्था जां विषय विच तुहाडा विश्वास है उन्हां नूं दान विच दे दिओ। तुहाडे नेड़े एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक विच पाओ ना के कूड़ेदान विच। अपना सब तो नजदीकी रिफंड पॉइंट लभण लई वैबसाइट उते जाओ अते अज ही 10 सेंट कमाउणा शुरू करो।

0: अनुज कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शो ग्राउंड, ऑफिस 5-1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing...
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शो ग्राउंड्स, ऑफिस 5-1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service।

0: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो, जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी एडवाइस है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
1: थैंक्स अटनिया, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: जा रही हो।
1: गेट रेडी ब्रिस्बेन, आ रहा है साल 2026 का सबसे बड़ा और धमाकेदार फैमिली फेस्टिवल, द ग्रैंड मल्टीकल्चरल मेला कार्निवल 2026। शनिवार 13 जून को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ पहुंचिए सुबह बोडा पार्क कुराबी, सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक। एक्सपीरियंस द मैजिक ऑफ यूनिटी, कल्चर एंड प्योर सेलिब्रेशन। यहां होंगे इंडोनेशियाई और फिलिपिनो ग्रुप्स के शानदार स्टेज परफॉर्मेंसेस, इंटरनेशनल फूड स्टॉल्स, शॉपिंग, राइड्स और बच्चों के लिए ढेर सारी फन एक्टिविटीज। और हां, शाम 6 बजे से सजेगी एक जादुई शाम, लाइव म्यूजिक अंडर द स्टार्स, तरुण रनिगा, रिकी फ्रॉम सिडनी और दिमान रॉय लेकर आ रहे हैं 1.5 घंटे का धमाकेदार बॉलीवुड म्यूजिकल कॉन्सर्ट फुल ऑफ एनर्जी एंड क्लासिकल हिट्स। एंड वेट, रात को आसमान चमकेगा एक अनफॉरगेटेबल फायरवर्क्स डिस्प्ले। सबसे बेस्ट पार्ट, एंट्री इज एब्सोल्युटली फ्री इंक्लूडिंग पार्किंग। तो डायरी में डेट नोट कर लीजिए, सैटरडे जून 13। ज्यादा जानकारी के लिए राज को कॉल करें 0402-651-045 पर या फरजाना को 0401-428-248 पर। लॉग ऑन टू brisbani.com या melacarnival.com और क्लिक करें इवेंट सेक्शंस पर। डोंट मिस इट।

0: Hi, this is Amitabh Bachchan.
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
2: Hi guys, I'm Manmeet from the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
3: Hi, this is Salman Khan. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
4: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
5: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Alia.
6: Hi, मैं हूँ सुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Brisbane से.
7: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Shahrukh Khan.
8: Hi, this is Ajay Devgan
9: और आप सुन रहे हैं Radio Brisbane.

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता, कल को इमरजेंसी हो जाए तो।
1: तूने ओम्सऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
1: बिल्कुल, ओम्सऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्सऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्सऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो ओमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे ओमसॉक एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा।
1: बिल्कुल,
0: यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो ओमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे ओमसॉक एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा।
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब

आसान हो। दिल को चुराने वालों आंख न चुराओ, नाम तो बताओ, जान पहचान हो, जीना आसान हो।

क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270 पर, या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउस और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270 रिमेम्बर द नंबर इज 04111270, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, ये प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज ranicreations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी, सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।

महंगा बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है, मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता। लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660

0: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।

फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी के 132-268 उत्ते कॉल करो। ए सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

0: कंटेनर्स फॉर चेंज के माध्यम से अपने खाली डिब्बे बोतलों से धनराशि कमाएं। आपके प्रत्येक योग्य खाली कैन बोतल और कार्टन पर 10 सेंट का रिफंड प्राप्त होता है। इसे हम बिन कॉइन कहते हैं। अपने बिन कॉइन की बचत करके रखें, खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें। आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक में डालें ना कि कूड़ेदान में। अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करें।
1: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेंस शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल DVDs, CDs, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा। ओपन daily from 9 a.m. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality service and reasonable prices.
2: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate. First issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.

कंटेनर्स फॉर चेंज राहीं अपने खाली डब्बिया बोतलों तो कमाई करो। तुहाडे हर एक योग खाली कैन बोतल अते कार्टन उते 10 सेंट दा रिफंड प्राप्त हुंदा है। इसनू असी बिन कॉइन कहिंदे हां। अपने बिन कॉइन नू बचा के रखो, खर्चो जां फिर जिस किसे संस्था जां विषय विच तुहाडा विश्वास है उन्हां नू दान विच दे दिओ। तुहाडे नेड़े एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक विच पाओ ना के कूड़ेदान विच। अपना सब तो नजदीकी रिफंड पॉइंट लभण लई वैबसाइट उते जाओ अते अज ही 10 सेंट कमाउणा शुरू करो।

0: अनुज कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी एडवाइस है go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
1: थैंक्स अटनिया, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

वहमो गुमान से दूर दूर, यकीन की हद के पास पास, दिल को भरम ये हो गया उनको हमसे प्यार है।

गेट रेडी ब्रिस्बेन आ रहा है साल 2026 का सबसे बड़ा और धमाकेदार फैमिली फेस्टिवल द ग्रैंड मल्टीकल्चरल मेला कार्निवल 2026। शनिवार 13 जून को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ पहुंचिए सुबह बोडा पार्क कुराबी सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक। एक्सपीरियंस द मैजिक ऑफ यूनिटी कल्चर एंड प्योर सेलिब्रेशन। यहाँ होंगे इंडोनेशियाई और फिलिपिनो ग्रुप्स के शानदार स्टेज परफॉर्मेंसेस, इंटरनेशनल फूड स्टॉल्स, शॉपिंग, राइड्स और बच्चों के लिए ढेर सारी फन एक्टिविटीज। और हाँ, शाम 6 बजे से सजेगी एक जादुई शाम। लाइव म्यूजिक अंडर द स्टार्स, तरुण रनीगा, रिकी फ्रॉम सिडनी और दिमान रॉय लेकर आ रहे हैं 1.5 घंटे का धमाकेदार बॉलीवुड म्यूजिकल कॉन्सर्ट फुल ऑफ एनर्जी एंड क्लासिकल हिट्स। एंड वेट, रात को आसमान चमकेगा एक अनफॉरगेटेबल फायरवर्क्स डिस्प्ले। सबसे बेस्ट पार्ट, एंट्री इज एब्सोल्युटली फ्री इंक्लूडिंग पार्किंग। तो डायरी में डेट नोट कर लीजिए, सैटरडे June 13। ज्यादा जानकारी के लिए राज को कॉल करें 0402-651-045 पर या फरजाना को 0401-428-248 पर। लॉग ऑन टू brisbani.com या melacarnival.com और क्लिक करें इवेंट सेक्शंस पर। डोंट मिस इट। आज

0: दिस इज अमिताभ बच्चन
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
2: हाय गाइस, आई एम मनमीत, वन ऑफ द मीत ब्रदर्स, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
3: हाय, दिस इज सलमान खान और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
4: हाय, दिस इज दीपिका पादुकोण और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
5: टू एवरीवन ट्यूनिंग इनटू रेडियो ब्रिसवानी, दिस इज आलिया।
6: हाय, मैं हूं तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी से।
7: टू एवरीवन ट्यूनिंग इनटू रेडियो ब्रिसवानी, दिस इज शाहरुख खान।
8: हाय, दिस इज अजय देवगन और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
1: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाई-अप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
2: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार, हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
3: तो ओम्स ऑर्ग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
2: हा? लेकिन भरोसा कैसे करूं?
3: अरे ओम्स ऑर्ग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
2: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
3: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
2: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
3: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448381360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470-631-801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई।
4: ओम्सॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।

0: फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज ranicreations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।
1: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर, या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपरवर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, ये प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।

प्रस्थानी 1701 AM एक बार फिर से लेकर आ गया है आपके लिए भक्ति सागर। ईश्वर के अनेक नाम हैं, लेकिन आप जिस नाम से चाहें उसे पुकारें, वो आपके अंदर अपनी श्रद्धा उसी भाव से उसी नाम से बढ़ा देते हैं। और हम भी आज एक बार फिर से ईश्वर के प्रेम का स्वाद चखने के लिए, ईश्वर के प्रति समर्पण भाव दिखाने के लिए और उसकी आस्था उसकी भक्ति करने के लिए एक बार फिर से जुड़ गए हैं भक्ति सागर में रेडियो प्रस्थानी 1701 AM पर। मैं हूं श्रोताओं सताक्षी आपके साथ, और मेरे साथ भक्ति रस में डूबे कई ऐसे अनोखे और खूबसूरत गाने हैं जो आज इस भक्ति के महत्व की महिमा भी आपको बताएंगे और आप भक्ति के रस में डूबकर इससे सराबोर भी हो जाएंगे। तो चलिए भक्ति का आनंद लेते हैं इस अगले गीत के साथ। सुनते रहिए हमारे साथ भक्ति सागर रेडियो प्रस्थानी 1701 AM पर।

लाखन में एक बात तुलसी बताए जात, लाखन में एक बात तुलसी बताए जात, जन्म जो सुधारा चाहो राम नाम लीजिए, जन्म जो सुधारा चाहो राम नाम लीजिए। कहते हैं ये वचन तुलसीदास जी के अंतिम उपदेशों में से एक है, जिसमें वो कहते हैं कि लाखों बातों में से एक बात ये कह रहा हूँ जो सबसे अनमोल है, ये अनुभव की बात है जो मैं आपको बता रहा हूँ। यदि आप चाहते हैं कि मानव जीवन आपका सफल हो, जीवन सार्थक हो और जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मिले, तो बस श्री राम के नाम का जाप, स्मरण और भक्ति कीजिए। भक्तजनों, सही बात है, तुलसीदास जी ने जीवन का मर्म बता दिया है। अगर आप जीवन मरण के बंधन से मुक्ति पाना चाहते हैं, अगर आप अपने इस मानव धर्म को सफल बनाना चाहते हैं, तो सब बातों को छोड़कर राम नाम का स्मरण करते रहिए। और आइए भगवान श्री राम को प्रणाम करते हैं और आगे चलते हैं आपको लेकर भक्ति सागर में, रेडियो प्रस्वानी 1701 AM पर।

भक्ति सागर सुन रहे हैं भक्तजनों, आप सताक्षी के साथ। भक्ति के इस सागर में इन भक्ति गीतों के साथ कुछ ऐसे ओतप्रोत हो रहे हैं हम, जैसे ये भक्ति गीत हमें प्रभु की ओर और करीब खींच रहे हैं। आइए भक्ति रस से डूबा एक और गीत सुनते हैं। सुनते रहिए भक्ति सागर और रहिए रेडियो ब्रिस्वानी पर सताक्षी के साथ।

रेडियो प्रस्वानी पर सताक्षी को सुन रहे हैं आप भक्ति सागर में। भगवान श्री कृष्ण ने एक बहुत ही बेहतरीन बात अर्जुन से उस वक्त कही थी जब वो गीता का उपदेश उन्हें दे रहे थे। भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकली श्रीमद् भगवद गीता में वो कहते हैं कि हे अर्जुन, बुराई छोटी हो या बड़ी हमेशा विनाश का कारण बनती है, क्योंकि नाव में छेद छोटा हो या बड़ा नाव को डुबो ही देता है। और ये जो तुम्हारे सामने खड़े हैं ये तुम्हारे अपने नहीं बुराई का साथ देने वाले हैं, इसलिए हे अर्जुन शस्त्र उठाओ, युद्ध करो और धर्म स्थापित करो। जी हाँ, अगर सामने अधर्मी खड़ा है तो वो चाहे जितना आपका अपना है, लेकिन अधर्मी अधर्मी ही होता है, पाप पाप ही होता है, फिर चाहे वो किसी के द्वारा भी किया गया हो। भगवान श्री कृष्ण की इसी वाणी के साथ आइए आपको आगे लेकर चलते हैं भक्ति सागर में, रेडियो प्रिस्वानी 1701 AM पर।

रेडियो प्रसारणी पर आप सुन रहे हैं भक्ति सागर, आपके साथ सताक्षी है और भक्ति के इस पावन और आनंदमय सफर में आपके साथ आगे चल रही हूँ एक और भक्ति गीत के साथ। सुनिए और मेरे साथ सुनते रहिए भक्ति सागर रेडियो प्रसारणी 1701 AM पर।

श्रोताओं, हम हमेशा माँ लक्ष्मी की पूजा तो करते हैं, लेकिन माँ सरस्वती की आराधना करना हम अक्सर भूल जाते हैं। माँ लक्ष्मी धन देने वाली हैं, लेकिन उस धन को कैसे खर्च करना है कि वो कई गुना बढ़ जाए, कहाँ लगाएं कि उसमें लगातार वृद्धि होती रहे, ये ज्ञान हमें विद्या से आता है। और विद्या की दात्री माँ सरस्वती, उनकी आराधना करने से हमारे दिमाग का विकास होता है। इसलिए सिर्फ माँ लक्ष्मी नहीं, माँ सरस्वती की आराधना भी कीजिए, क्योंकि माँ सरस्वती आपको धन कमाने के इतने रास्ते दिखाएंगी कि माँ लक्ष्मी आपके पास आएंगी जरूर। तो माँ लक्ष्मी में खोकर माँ सरस्वती को भूलना नहीं है, माँ सरस्वती को याद करके माँ लक्ष्मी के आने के रास्ते खोलने हैं। बहुत ही सुंदर बात है, बस समझने की देर है। आइए सरस्वती वंदना के साथ आगे बढ़ते हैं। रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM।

मनुष्य अक्सर अपनों को पराया और परायों को अपना समझ बैठता है, लेकिन ज्ञान कहता है कि जब परिवार के सदस्य अप्रिय लगने लगे और पराए अपने, तो समझ लीजिए आपका विनाश का समय प्रारंभ हो गया है, क्योंकि पराए आपके अपने बनकर आपको धोखा देते हैं। वो आस्तीन में पाले उस सांप की तरह होते हैं जो वक्त आने पर सबसे पहले आपको डसता है। इसलिए अगर अपनों पे भरोसा नहीं कर सकते तो परायों पे भी भरोसा मत कीजिए। सुनते रहिए भक्ति सागर सताक्षी के साथ रेडियो ब्रिस्वानी पर।

तो भक्तजनों, ये था आज भक्ति सागर में हमारा आपके साथ, या ये कहें ईश्वर की वंदना के साथ एक और साथ। आज हम ईश्वर के दो कदम और नजदीक बढ़े। उम्मीद करते हैं कि आज आप इस भक्ति रस में खोकर आनंदित जरूर हुए होंगे। तो प्रभु की कृपा आप पर बनी रहे और आपको हमेशा वो धर्म की ओर और अधर्म से दूर करे। इसी मंगल कामना के साथ आज के सफर से ले रही हूँ विदा। राधे राधे।

0: हैं रेडियो 79.1 जिसके द्वारा आप हर रोज हमारे हिंदुस्तानी कार्यक्रम को सुनते हैं। याद रहे हमारा टेलीफोन नंबर है 3279-1701, 3279-1701।
1: यह है रेडियो 79.1 ब्रिस्बेन और आपके साथ फिरोज खान। हमारे स्टूडियो में रविवार के सुबह 7 बज चुके हैं। मैं आपके साथ देता हूं हर रविवार को सुबह 6 से 7 बजे तक आपके लिए हम पेश करते हैं कुछ चुने हुए डिवोशनल संगीत, और फिर 7 से लेकर 8 बजे तक हमारा खास इस्लामिक प्रोग्राम जिसमें आप सुन सकते हैं 7 से कुछ चुने हुए हम्द, नात और कव्वालियां, और फिर उसके बाद आपके लिए हम पेश करते हैं हमारा रेगुलर सेगमेंट सवाल और जवाब मौलाना फजलदाद के साथ। तो चलो शुरुआत करते हैं कुछ चुने हुए हम नात और कव्वाली के साथ, उसके बाद मौलाना फजलदाद के साथ सवाल और जवाब, हमारा रेगुलर इस्लामिक प्रोग्राम।

0: अभी आप सुन रहे थे कुछ चुने हुए हमद, नात और कव्वाली, जिसको हम पेश करते हैं हर रविवार की सुबह 7 बजे से। उससे पहले आप सुनते हैं कुछ चुने हुए डिवोशनल संगीत। रेडियो ब्रिस्बानी 1701 ब्रिस्बन, और हर हफ्ते की तरह एक बार फिर आपकी खिदमत में आज सुबह के इस्लामिक प्रोग्राम।
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
2: پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم
2: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے

0: इन तमाम चीजों के बावजूद इज्जत दी है, तो आखिर उसकी वजह यह है कि तू मेरी रजामंदी के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजार, इसलिए मैंने तुझे वो इज्जत दी है। दैट्स व्हाई आई हैव गिवन यू दिस एक्सट्रीम रिस्पेक्ट, बिकॉज आई वांट यू टू लिव अ लाइफ अकॉर्डिंग टू माई, इन अदर्स, अल्लाह'स प्लेजर। तो इसलिए अगर हमने अल्लाह की मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारी, तब तो आखिरत के अंदर है ही है, दुनिया के अंदर भी इज्जत। और अगर हमने अल्लाह की मर्जी के मुताबिक जिंदगी नहीं गुजारी, तो आखिरत के अंदर तो रुसवाई है ही है, दुनिया के अंदर भी रुसवाई है। ऐसा करते हैं, ब्रेक की तरफ जाते हैं, और ब्रेक की तरफ के बाद इंशाल्लाह जो सवाल हुआ है उस सवाल का भी जवाब देते हैं। मैं हूं आपका मेहजबान मौलाना फजलदाद, ये है सनराइज रेडियो, और हमारे वीकली प्रोग्राम एवरी फ्राइडे 8 बजे से 9 बजे तक शाम के वक्त हमारा ये प्रोग्राम होता है आलिम ऑन एयर। फिलहाल ब्रेक की तरफ।
1: आलिम ऑन एयर इज ब्रॉडकास्ट ऑन सनराइज रेडियो ब्रैडफोर्ड एवरी फ्राइडे इवनिंग्स फ्रॉम 8 PM टू 9 PM, दैट्स लंदन टाइम। तो एक बार फिर ये है आलिम ऑन एयर मौलाना फजलदाद।
0: जी हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर आपका मेहजबान मौलाना फजलदाद, और हमारा ये प्रोग्राम सनराइज रेडियो के ऊपर हर हफ्ते जुमा की शाम को 8 बजे से 9 बजे तक सनराइज रेडियो 103.2 FM 100.6 FM अक्रॉस द होल ऑफ वेस्ट यॉर्कशायर और पूरी दुनिया के अंदर आप इसको सुन सकते हैं www.sunriseradio.fm। सवाल ये हुआ कि कुर्बानी अब लोगों ने कर ली है कुछ दिन पहले ईद उल अज़हा के मौके के ऊपर, और हमारी दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिन जिन लोगों ने कुर्बानियां की हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबकी कुर्बानियों को कबूल फरमावे। जो हज पर गए हुए हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके आमाल, बल्कि हम सब के आमाल, जो भी आमाल हों नेक आमाल, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन सबको कबूल फरमाए। तो सवाल ये था कि कुर्बानियां जब हम करते हैं तो जाहिरी बात है कि पैसे जो हैं वो बैंक के अंदर रखते हैं, यहां से बैंक के अंदर भेज दिए और वहां से उन्होंने बैंक के अंदर से निकाल दिए, और बैंक अक्सर तौर पर 99.9% जो है, एक जो इस्लामी बैंकिंग सिस्टम है वो अलग बात, लेकिन जनरली वो सब सूद के ऊपर चलते हैं और उसके अंदर सूद का कारोबार होता है। तो अब ये है कि जब हमारी कुर्बानी के ऊपर सूद आया है तो उससे तो नाजायज होनी चाहिए, ये उनका सवाल था। तो उसका जवाब यह है कि नहीं भाई, आपकी कुर्बानी के ऊपर सूद नहीं आया है। उसकी वजह यह है कि जब आप अपने पैसे डालते हैं तो आपके पैसे उनके पास रहते हैं, जो सूद है वो अलग उसके ऊपर, यानी एक अलग चीज है। इसको दो ट्रांजैक्शन समझो बैंकिंग के अंदर साल के आखिर। अव्वलन तो यानी ये बात शुरू करने से पहले ये बात अर्ज करता जाऊं कि आप हमेशा कोशिश करो कि ऐसे बैंक के अंदर या ऐसे अकाउंट के अंदर रखो जहां सूद होता ही नहीं है, और अगर ऐसा अकाउंट आपको मुयस्सर नहीं है तो फिर वो अकाउंट इस्तेमाल करो कि जिसके अंदर मिनिमम, सबसे कम सूद हो। कुछ पेंस होते हैं वगैरह, बहुत सारे अकाउंट हैं, लेकिन इधर मैं अभी इसलिए नहीं कह सकता हूं क्योंकि एक किस्म की एडवर्टाइजिंग हो जाती है और वो मुनासिब नहीं है। अगर आप जाती तौर पर पूछने चाहते हैं तो पूछ सकते हैं अपने तौर पर, लेकिन फिलहाल आपको अकाउंट ऐसे मिलते हैं कि उसके अंदर बहुत ही कम, मतलब कुछ पेंस इन अ होल ईयर, पूरे साल के अंदर कुछ पेंस आते हैं, बाकी वो अपने एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर वो ले जाते हैं। यानी मैं करंट अकाउंट की तरफ इशारा करना चाहता हूं, और इस तरीके से जो इस्लामी अकाउंट है उसके अंदर तो है ही नहीं, और कुछ इस्लामी अकाउंट्स हैं तो वो जिसके अंदर, तो आपको ऐसी सूरत में ऐसे अकाउंट में रखना है कि जिसके अंदर कोई सूद ही ना हो, इस्लामी अकाउंट्स। और अगर वो अकाउंट मुयस्सर ना हो तो वो अकाउंट कि जिसके अंदर मिनिमल सूद हो, क्योंकि उससे बच ही नहीं सकता इन यानी इस सिस्टम के अंदर। तो वो साल के आखिर में जब आपको कह देते हैं कि हमने आपके अकाउंट में 1.5 पाउंड या 2 पाउंड सूद रखा है, तो वो अगर आपने निकाल कर किसी को दे दिया बगैर नियत सवाब के, तो पता चला कि आपके पैसे जितने भी हैं

0: उसके अंदर किसी किस्म का सूद लगा ही नहीं, और चूंकि उसके अंदर उसके साथ आपके अकाउंट के साथ कोई सूद लगा नहीं है, तब तो कोई मसला ही नहीं है। इसी तरीके से जो पाकिस्तान के अंदर है, वहां भी मुजारबत का यानी दीगर शराकत का इस किस्म के वहां सिस्टम्स हैं, प्रोडक्ट्स उसको कहते हैं। अगर उसके मातहत अगर आप जाते हैं तो उसके अंदर सूद नहीं है, और अगर इस किस्म के अकाउंट्स आपको मिलते नहीं बल्कि मिनिमल अकाउंट है, तो साल के आखिर में अगर आपने वहां से जो उनको उन्होंने आपको 100 रुपये या 150 रुपये या साल के आखिर में सूद दिया है, क्योंकि उससे बचावत हो ही नहीं सकती, वो आपने निकाल कर गुरबा फकरा को या किसी को बगैर नियत सवाब के दे दिया, तो आपने अपने अकाउंट को पाक कर दिया। आपके अकाउंट के अंदर आपके जो 1000 पाउंड है या 500 पाउंड है या 1 लाख रुपया है 2 लाख रुपया, उसके ऊपर कोई सूद नहीं आया। बाकी सूद करते रहे, उसका आपके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि अक्सर तौर पर कोई ऐसा बैंक इख्तियार करना कि जो सूदी सिस्टम के अंदर हो ही ना हो, ये हो ही नहीं सकता। सूदी सिस्टम है, लेकिन आप ऐसे करें कि मेरा जो माल है उसके ऊपर सूद ना आए, उसके साथ सूद मिल ना जाए। अगर इंसान इस तरह करे तो इस तरह फिर आपकी कुर्बानी सूद के साथ मिलती नहीं है। आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। तो इसलिए अक्सर तौर पर मुसलमानों का यही मसला है, और ये जो चैरिटीज होती हैं वो यही करती हैं, वो कोशिश करती हैं कि सूद से उनकी हिफाजत हो जाए। तो इसलिए जब आप उन चैरिटीज को पैसे देते हैं तो उसके अंदर फिर उसके ऊपर सूद नहीं लगता, यानी वो सूदी निजाम के अंदर नहीं आती। बाकी अकाउंटों के अंदर, बाकी लोगों के अंदर जरूर होता है। उसकी मिसाल मैं ये अर्ज किया करता हूं कि अगर आप किसी जगह के अंदर जाएं, किसी होटल के अंदर या किसी रेस्टोरेंट के अंदर, किसी टेक अवे के अंदर, और आपको मजबूरी है कि उस जगह के अंदर उस एक खाने की जगह के अलावा और कोई खाने की जगह है ही नहीं, वही एक टेक अवे है या वही एक रेस्टोरेंट है या वही एक होटल है, इसके अलावा कोई और आपके पास ऑप्शन ही नहीं है, और उसके अंदर शराब हो, अव्वलन तो यह है कि इंसान ऐसी जगह इख्तियार करे कि जहां हो शराब न हो। लेकिन एक मिसाल समझाने के लिए कि उस एक होटल के अलावा और कोई खाने की जगह ही नहीं है, या उस एक दुकान के अलावा आपके इलाके के अंदर और कोई दुकान है ही नहीं जहां से आप खरीद सकते हैं, तो फिर यह है कि आप वहां ठीक है खाना खा ले, आप शराब को हाथ न लगाए। लेकिन ये उस सूरत के अंदर कि अगर कोई और दुकान है ही नहीं, और कोई रेस्टोरेंट है ही नहीं, और कोई निजाम है ही नहीं, तब अगर है तो उस जगह को इस्तेमाल करो। तो इसी तरीके से क्योंकि बैंकिंग सिस्टम 100 सालों से इस तरह चल रहा है, और ये मोनोपोली अब इस अंदाज के अंदर है कि वो चल ही रहा है सूद के ऊपर, काश कि जो इस्लामी निजाम है और इस्लामी तरीका है बैंकिंग सिस्टम का, अगर वो राइज हो जाता तो उसके अंदर न सूद है और उसके अंदर न हराम है और उसके अंदर फायदा भी है। मुजारबत भी कहते हैं, मुशारकत भी कहते हैं, वगैरह मुख्तलिफ बहुत तरीके हैं सदियों से, और उलमा ने कई साल पहले एक पूरा उसका निजाम दिखाया है, बतलाया है, कुछ बैंक उसके मुताबिक चलती भी हैं। तो इसलिए दुआ भी करते रहें कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जो सही बैंकिंग सिस्टम है इस्लामी निजाम का, और वो है भी कामयाब तरीन, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको राइज करे ताकि सब लोग जो हैं इस सूदी लानत से बच जाए। इसके साथ साथ आखिरी बात मैं ये भी अर्ज करते जाऊं प्रोग्राम खत्म करने से पहले कि चूंकि मीडिया खामोश हो गया है फलस्तीन के इलाके से और दीगर जो इलाकों के अंदर जहां जंगें हो रही हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वहां जुल्म नहीं हो रहा। जुल्म बड़े ही पैमाने के अंदर अभी तक हो रहा है, और अगर आप देखो अल जजीरा ने जो खबर गुज़िश्ता कल भी दी है और इस तरीके आज भी कि वहां जो टॉर्चर के तौर पर बाज प्रिजनर्स के अंदर मुसलमानों को जो जुल्मन उनको टॉर्चर किया जाता है, जिस अंदाज के अंदर किया जाता है, इंसान जब उनके हालात पढ़ता है तो आंखों के अंदर आंसू आ जाते हैं। तो खैर, कहने का मकसद यह है कि दुआ करो अल्लाह रब्बुल इज्जत जितने भी मजलूमीन हैं उनकी मदद फरमा, उनको जुल्म से निजात नसीब फरमा और जालिमीन जो है या अल्लाह उनको समझ दे दे सही समझ ताकि वो जुल्म करने से बाज आ जाए और जुल्म करने से रुक जाए। इसी के साथ आज के इस सेशन को दुआ के साथ खत्म कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन मुहम्मदिन व आलिही व सहाबी अजमाईन ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم يا رب العالمين تو ہم سب کو دین کی سچی اور صحیح سمجھ نصیب فرما یا اللہ تو ہم سب کو دین پر استقامت نصیب فرما یا اللہ جتنے بھی لوگ پریشان حال ہیں اور جس قسم کے بھی پریشانی کے اندر ہیں یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما और या अल्लाह जितने भी बीमार हैं चाहे वो रूहानी बीमार हो जिस्मानी बीमार हो या अल्लाह तमाम बीमारों को शिफा नसीब फरमा। या अल्लाह जिन जिन लोगों ने दुआ का कहा है या लिखा है या उनको तवक्को है या अल्लाह उनकी भी हमारी भी जायज़ हाजात जो हमारी मसलहत के मुवाफिक हो और जिसमें तेरी रजामंदी हो या अल्लाह अपनी कुदरत कामिले से उन तमाम को पूरा फरमा। या अल्लाह जितने भी मरहूमीन इस दुनिया से जा चुके हैं उन सब की बख्शिश और मगफरत फरमा और हमारी जब मौत का वक्त आवे तो या अल्लाह तू हम सब को खात्मा बिल ईमान नसीब फरमा। या अल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी भी खैर की दुआएं मांगी हैं उन तमाम खैर की दुआओं के अंदर तो हम सबको हिस्सा नसीब फरमा और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन चीज़ों से हिफाजत और पनाह मांगी है या अल्लाह उन तमाम चीज़ों से तो हम सबको पनाह और हिफाजत नसीब फरमा। या अल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक हमीदा तू हम सब को नसीब फरमा और बुरे अखलाक से हम सब की हिफाजत फरमा। और या अल्लाह सबसे बड़ी बात वो तेरी रजामंदी है या अल्लाह दुनिया और आखिरत के अंदर तू हम सब को अपनी रजामंदी नसीब फरमा। سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين। मैं हूं आपसे मुखातिब आपका मेहजबान मौलाना फजलदाद और ये है सनराइज रेडियो की नशरियात। सनराइज रेडियो हमारा 103.2 FM, 100.6 FM across the whole of Yorkshire. हमारा ये वीकली प्रोग्राम होता है एवरी फ्राइडे इवनिंग्स बिटवीन 8 o'clock एंड 9 o'clock, 8 बजे और 9 बजे के दरमियान हमारा ये प्रोग्राम होता है और इसमें आप भी हिस्सा ले सकते हैं, फोन इन कर सकते हैं हमारे स्टूडियो को। इसी के साथ वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु।
1: अभी आप सुन रहे थे आलिम ऑन एयर हजरत मौलाना फजलदाद के साथ। आलिम ऑन एयर इज ब्रॉडकास्ट ऑन सनराइज रेडियो ब्रेडफर्ड एवरी फ्राइडे इवनिंग्स फ्रॉम 8 PM टू 9 PM, दैट्स लंदन टाइम, एंड रिकॉर्डेड लाइव हियर 6 AM टू 7 AM एवरी सैटरडे मॉर्निंग एंड रीप्लेड ऑन रेडियो 1701 संडे मॉर्निंग्स फ्रॉम 7 to 8। इफ यू वांट टू हैव अ कॉपी ऑफ दिस प्रोग्राम प्लीज फोन मी और टेक्स्ट मी on 0431-919-964, and I will give you a copy or send you a copy via WhatsApp. I am Firoz Khan.
2: A'udhu billahi minash shaytanir rajim.
3: Panah mangta hu Allah ki shaitan mar.

कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा स्थापित अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ अर्थात इस्कॉन की ओर से प्रस्तुत किया जा रहा है। आध्यात्मिक, धार्मिक, सामाजिक और पारिवारिक उद्देश्य आपकी सेवा में

0: है रेडियो 79.1 जिसके द्वारा आप हर रोज हमारे हिंदुस्तानी कार्यक्रम को सुनते हैं। याद रहे हमारा टेलीफोन नंबर है 3279701।
1: जी हाँ दोस्तों, हमारा नंबर है 3279-1701 या 043-003-1701 पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। दोस्तों चलिए, आप सभी का स्वागत है, आप सभी का प्यार भरा नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। और अभी आपने सुना प्रोग्राम, बहुत से धार्मिक प्रोग्राम सुने हैं और वेदवाणी भी सुना आपने। आपको याद दिला दूं कि हर बुधवार सुबह को 5 बजे से आप सुनते हैं और फिर जी हाँ रविवार को 8 बजे से लेकर 9 बजे तक। 9 बजे मैं आता हूं दोस्तों, फिर इस कार्यक्रम के बाद में आप हो जाएंगे फिरोज भाई के साथ, और फिर उसके बाद रोय सिंह और फिर सुशीला के साथ, और आज 5 बजे से शशि झोकन के साथ। ठीक है, तो आप सुन रहे हैं आपकी अपना आपका फेवरेट रेडियो बिजवानी। जी हाँ, तो चलिए मौसम की ओर देखते हैं। आज के लिए कहा गया है कि मौसम, वैसे तो आमतौर पर पूरा हफ्ता मौसम साफ रहेगा, बारिश होने की संभावना नहीं है दोस्तों। और आज के लिए कहा गया है, आज मिनिमम 13 रहा लेकिन मैक्सिमम 23 रहेगा। और जैसे मैंने कहा, नो रेन टिल सैटरडे। कल के लिए कहा गया है कि 12 रहेगा मिनिमम, अधिक से अधिक 22 यानी 12 and 22 रहेगा दोस्तों। ट्यूजडे को 10 and 24 रहेगा, वेंसडे को 14 रहेगा और अधिक से अधिक 25 रहेगा। थर्सडे को 12 डिग्रीज रहेगा मिनिमम, मैक्सिमम 22 यानी 12 and 22। फ्राइडे को 12 and 21 और सैटरडे को दोस्तों 11 जी हाँ लोवेस्ट 11 and 21 डिग्रीज रहेगा। तो ये रहा हमारा वेदर। तो चलो एक ही घंटा का प्रोग्राम में टाइम बहुत नहीं वेस्ट करेंगे दोस्तों। चलो आज का पहला गीत आप सुनेंगे। गीत जो है बहुत बहुत प्यारा गीत है, गीत मुझे बहुत पसंद है दोस्तों। और गीत को गाया है अरिजीत सिंह जीनियस एल्बम से, और गीत का बोल है तेरा फितूर। मैं थोड़ा नया गाना लेकर आया हूँ क्योंकि अभी कुछ ही देर में फिरोज भाई के साथ आपको बहुत अच्छे अच्छे पुराने गीत सुनने को मिलेगा। जी हाँ, आप सब सोचते होंगे फितूर क्या है। फितूर का मतलब होता है जुनून, दीवानापन या किसी के प्यार में पूरी तरह डूब जाना, इसके फितूर कहते हैं। चलो इस गीत में शायद कह रहा है कि मैं तेरे प्यार में इतना खो गया हूं कि मेरा दिल और दिमाग पर सिर्फ तेरा ही असर है। वाह, चलो बहुत प्यार से गाया है अरिजीत सिंह ने।

बहुत प्यारा गीत। और चलो अगला जो गीत है दोस्तों, दबंग थ्री का है, गीत का बोल है आवारा। आवारा कैसा शब्द है दोस्तों, दोस्तों जो केयर फ्री पर्सन होता है, जो इधर उधर घूमता रहता है, थोड़ा नेगेटिव वो है, जैसे कि कोई मंजिल नहीं, बस चला चला जा रहा है अपने दुनिया में विद नो रीजन और वट एवर। लेकिन कभी कभी इस मूवी में इसको पॉजिटिवली यूज किया गया था दोस्तों, कि मैं एक आजाद मुसाफिर हूं जो अपनी राह पर चलता रहता हूँ। सी हाउ दे हैव चेंज्ड इट। जी हाँ, तो ये बहुत प्यारा गीत है दोस्तों, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। सलमान अली मुझे बहुत पसंद है और मुस्कान साजिद वाजिद के संगीत पर इस गीत को गाए हैं दोस्तों। बहुत प्यारा गीत है, होपफुली यू लाइक इट। फिल्म दबंग 3 का है।

और हाँ दोस्तों, बड़ा प्यारा सा गीत है अभी जो आपने सुना दोस्तों। चलिए एक बात मैं कहना चाहूँगा कि इन दिनों एवरीवन इन दिस डे एंड एज, इनका जो स्ट्रेस वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंजेस फेसिंग आवर यंग जनरेशन दोस्तों। कभी काल मैं सोचता हूँ हमारा लाइफ डिफिकल्ट था, लेकिन इतना स्ट्रेसफुल नहीं था दोस्तों। ठीक है, हम स्कूल जाते थे बिना जूता के, सही, और ये सब तो हुआ करता था, लेकिन उतना ज़्यादा स्ट्रेस नहीं रहता था दोस्तों। द वर्ल्ड हैज़ बिकम हाईली कॉम्पिटिटिव, है कि नहीं, और मेनी यंग पीपल आर अंडर इमेंस प्रेशर टू परफॉर्म, अचीव एंड कीप अप विद एवर ग्रोइंग एक्सपेक्टेशन, चाहे स्कूल वर्क हो, चाहे काम हो, चाहे कुछ हो। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट थिंग, बिकॉज आजकल कॉम्पिटिशन बहुत बहुत फियर्स है दोस्तों। और एक तो प्रॉब्लम है कि AI आजकल बहुत कुछ टेक ओवर करने लगा है, और काम भी थोड़ा शायद मुश्किल होगा आगे चलकर। जी हाँ, यू हैव टू बी रियली स्पेशलाइज्ड। तो ये सब प्रॉब्लम मेरे ख्याल से इस दुनिया में एक नया तरह का जो है प्रॉब्लम होने लगा हमारे बच्चों पर। ठीक है, खैर, गो इजी विद देम। और चलिए दोस्तों, कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। जावेद अख्तर का लिखा हुआ और उदित नारायण ने गाए हैं इस गीत को, बहुत प्यारा गीत है दोस्तों। सभी गीत तो प्यारा है, लेकिन ये भी एक है, और प्यार हो गया का गीत है दोस्तों मेरी सांसों में।

और चलिए, जो कुछ मैं कहा था उसमें काफ़ी लोग अभी मुझे टेक्स्ट भी किए हैं, और चलो ठीक है, बात भी ठीक है, उसमें हम अभी मैं चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि एक घंटा का प्रोग्राम है दोस्तों। और देखो अभी टाइम कितना जोर से जा रहा है, 23 मिनट हो गया है 9 बजकर, और यही मेरी कोशिश है कि आज के बच्चे अच्छे गीत आपके लिए, क्योंकि आप जानते हैं आज का जो लाइनअप है बहुत अच्छा रहता है दोस्तों, बहुत से लाइन बिल्कुल भरा हुआ होगा। इसके बाद में भी आपको अच्छे अच्छे पुराने गीत सुनेंगे एंड सम सेलेक्टेड गुड सॉन्ग्स बाय फिरोज भाई, तो आप ज़रूर सुनिएगा। और फिर जैसे मैंने कहा आप हो जाएंगे, आई एम प्रीटी श्योर, जी हाँ, रोहित सिंह आएंगे और फिर उसके बाद सुशीला सू जिसको प्यार से सू कहते हैं सब, और फिर भूलना मत आप शशि झोकन के साथ हो जाएंगे, फिर उसके बाद सताक्षी के साथ। तो कार्यक्रम ज़रूर सुनिए दोस्तों, सुनते रहिए। चलिए अगला जो गीत है, दिल है कि मानता नहीं, क्यों मान नहीं रहा, चलो इस गीत में सुनते हैं। अनुराधा पौडवाल साथ में है कुमार सानू।

0: जी हाँ दोस्तों, दिल है कि मानता नहीं, दिल भी कभी कभी अपना और काम कर बैठता है। जी हाँ दोस्तों, खैर चलो, बड़ी खुशी की बात है कि हमारे साथ लाइन पर है रावजी। रावजी नमस्कार, आपका स्वागत है रेडियो बिजबानी पर।
1: नमस्कार जतेश भाई, आपने आज क्या कमाल कर दिया है।
0: क्या बात, क्या बात,
1: ऐसा चुन चुन करके गीत लाते हैं तो दिल खुश हो जाता है और फिर दिल मानता ही नहीं।
0: दिल मानता ही नहीं, सही बात है।
1: इस पर मेरे पास एक छोटी सी वार्ता है।
0: जी जी,
1: मैं सोचता हूँ कि आपको सुनाऊं।
0: जी सुनाइए जरूर।
1: श्वास और मस्तिष्क के चक्रों का जीवित घड़ी के साथ गहरा संबंध है। विलियम प्लीस के
0: जी
1: अनुसार
0: जी
1: पुरुष की शक्ति सहनुष्ठता और साहस का समय चक्र 23 दिन का होता है। दूसरा मत है कि मनुष्य में बुद्धिमत्ता का समय चक्र 30 दिन का होता है। स्त्रियों में ग्रहणशीलता और अंतर्दर्शन का समय चक्र 28 दिन का होता है।
0: अच्छा,
1: ये समय चक्र प्रत्येक कोशिश में प्राप्त है।
0: जी,
1: मनुष्य की सहज प्रवृत्तियां भूख, नींद, जागरण आदि आदि समय बोधक जीवन घड़ी के साथ जुड़ी हुई है।
0: वो
1: इसी पर मैंने सोचा कि वो दिल मानता ही नहीं,
0: जी जी,
1: तब मैंने इसको ढूंढ करके लाया हूँ।
0: जी,
1: प्राण धारा का प्रवाह शरीर के अंगों में सदा एक समान नहीं होता, वह बदलता ही रहता है। जैसे हमारे विचार बदलते रहते हैं, दिन भर में कितने परिवर्तन और चक्र इस प्रकार है।
0: जी,
1: सुबह 3 बजे से 5 बजे तक फेफड़े में रहता है। सुबह 5 से 7 बजे तक बड़ी आंत अधड़ी में रहता है। सुबह 7 से 9 बजे तक पेट पर रहता है। सुबह 9 से 11 बजे तक तिल्ली अग्नशय पर होता है। दोपहर 11 से 1 बजे तक हृदय पर रहता है।
0: जी,
1: दोपहर 1 से 3 बजे तक छोटी आंतड़ी में रहती है। दोपहर 3 से 5 बजे तक उत्सर्जन तंत्र, हम बड़े विचार में रहते हैं, इसी को कहते हैं कि दिल मानता ही नहीं। सायकाल 5 से 7 बजे तक गुर्दे में रहता है और सायकाल 7 से 9 बजे तक हृदय की झिल्ली में रहता है। रात्रि में 9 से 11 बजे तक श्वसन तंत्र पावन तंत्र में रहता है। हम हर एक प्रकार के विचार में घोषित हो जाते हैं। रात्रि में 11 से 1 बजे तक मूत्र तंत्र में रहता है। रात्रि में 1 से 3 बजे तक यकृत। वर्तमान शिक्षा प्रणाली में बौद्धिक विकास और बल दिया जा रहा है। विकास चाहे बौद्धिक हो या चरित्र, सबका आधार बनता है। और वो कहाँ रहता है? मस्तिष्क में रहता है। इसीलिए इस गायन को किसी कवि ने लिखा, दिल मानता ही नहीं।
0: दिल मानता ही नहीं, चंचल है। जी हाँ। राव जी, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू वेरी मच। जी,
1: जब मैंने इस गीत को सुना तो मेरे को ऐसा लगा
0: जी,
1: वास्तव में जतीश भाई 1 घंटे की कार्यक्रम लेकर आते हैं लेकिन बहुत गूढ़ विषय को लाते हैं।
0: चलो राव जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, अच्छा लगा आपने पार्ट लिया। मैं कल ही आपके बारे में सोच रहा था क्योंकि मैंने सुना था परमा के साथ, तो चलो बहुत अच्छा लगा। गिव माय रिगार्ड टू आंटी एंड द फैमिली।
1: या
0: ओके, सबको प्यार देना, ठीक है?
1: अच्छा
0: अच्छा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो चले, जो दोस्तों राव जी से हम सुन रहे थे, और राव जी शुरू से हमारे साथ लगे हुए हैं, हमेशा साथ देते हैं, इसके लिए राव जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे हैं रेडियो बिजवानी, आपकी अपनी पहचान। चलिए, बड़ा प्यारा गीत है दोस्तों, हेमंत कुमार ने गाया है, दिन रात बदलते हैं हालात।

जी हाँ दोस्तों, दिन रात बदलते हैं, हालात बदलते हैं, पेड़ बदलते हैं, पौधे सब पत्ता वत्ता सब बदलते हैं दोस्तों। वैसे आप जानते हैं कि हम इंसान भी बदलते हैं, ऑलमोस्ट इन 7 ईयर्स हमारा पूरा बॉडी चेंज होता है दोस्तों। देयर सम पार्ट्स दे डोंट चेंज, सम इम्पोर्टेंट सेल्स रिमेन विद यू फॉर मोस्ट ऑफ ऑल ऑफ योर लाइफ, बट बहुत पार्ट्स है हमारे बॉडी में जो चेंज होते रहते हैं, कोई 2 हफ्ते में, कोई 3 हफ्ते में, लेकिन अब सेफ फिगर इज अबाउट 7 ईयर्स वी आर अ ब्रैंड न्यू पर्सन ऑलमोस्ट। ठीक है, तो देखिए परिवर्तन या चेंज जो कुछ करो, ये तो हमारा नियम होता है दोस्तों, हम चेंज होते रहते हैं, टाइम के साथ भी चेंज होते रहते हैं कि नहीं। तो चले एक गीत है, ये गाया है प्रीतम और के, और के तब हमारे साथ नहीं रहे दोस्तों, अनफॉर्चुनेटली चले गए हैं, लेकिन चलो उनकी यादें, उनकी आवाज, गीत सब है यहाँ पर अभी भी।

0: कहानी है
1: कि अपनी पहचान। आप सुन रहे हैं दोस्तों, अगर अभी आपने रेडियो ऑन किया है तो चलो आपका स्वागत करते हैं, और बहुत से लोग इंटरनेट पर हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। चलिए, खुशी की बात है कि हमारे साथ जितेन प्रसाद जी हैं। जितेन भाई, आपका सलाम और नमस्कार, और आपका वेलकम टू रेडियो बिजवानी।
2: थैंक यू भैया जतीश, नमस्ते एंड सलाम टू ऑल द रेडियो लिसनर्स एंड मेरा प्यार भरा नमस्कार
1: जी। अब कुछ हमारा गेम पर चेंजेस हुआ है, आप बताएंगे हमारे श्रोताओं को। जी हाँ
2: जरूर, जी हाँ, जो क्विंसलैंड पीजी फुटबॉल एसोसिएशन का जो एनुअल क्विंसलैंड बैटल ऑफ जायंट्स टूर्नामेंट आज शुरू होने का था, लेकिन जिसे आप सब जानते होंगे कि लास्ट वीक का रेन और दिस वीक का रेन ग्राउंड मेड इट अनअवेलेबल। केशियर रेंज ग्राउंड वस्ट हम लोग को इन्फॉर्म किया ऑन फ्राइडे दैट इट्स नॉट अवेलेबल। देन फिर हम लोग बहुत कोशिश किए दो चार और वेन्यू खोजने में
1: जी,
2: लेकिन ग्राउंड पिच जो है वो ऑल्सो भी किसी ने कॉल किया, भाई जितने इतना सुंदर घाम जो निकला हुआ है ना, लेकिन वो जो टू वीक्स का रेन हैज रियली मेड द ग्राउंड अनप्लेएबल एंड दे डिड वांट टू डिस्ट्रॉय द ग्राउंड एज वेल, यू नो।
1: Yes.
2: So that's why आज का जो फिक्चर्स है वो मूव हो गया नेक्स्ट वीक
1: जी।
2: तो क्या होगा कि वी स्टार्टिंग ऑन थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे एंड फाइनल्स विल नाउ बी प्लेड ऑन 14th ऑफ जून एट एकेशिया रिज ग्राउंड।
1: आई थिंक जो कुछ होता है एक ब्लेसिंग होता है भाई। अभी देखो इतना अच्छा मौसम रहेगा, ग्राउंड भी खूब रेडी हो जाएगा, और गेम में भी और मजा आएगा मेरे ख्याल से, बिकॉज इट्स नॉट गोइंग टू रेन ऑल ऑफ दिस वीक। ओके, सो हाँ, तो आई थिंक वी विल हैव अ वेरी गुड मैच। ठीक है, और थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग एंड लेटिंग आवर लिसनर्स नो।
2: आपके सुनने वाले को बता देता हूँ कि हमारा फेसबुक पे
1: जी
2: QLD PGFI, उस पर जाइए और सब अपडेट्स वहाँ पे एकदम अप टू डेट, मिनट बाय मिनट अपडेट हो
1: ओके
2: मिलेगा।
1: अच्छा जी,
2: थैंक यू भैया,
1: थैंक यू सो मच। तो प्रधान जो जितेन प्रसाद से हम बातें कर रहे थे दोस्तों, गेम हैज बीन पोस्टपोन्ड एज यू नो नाउ, और गेम जरूर आप जाकर चेक कर सकते हैं और हमारे रेडियो से भी आप सुनेंगे। और आगे बढ़ते हुए चलिए, गाना है जो फिल्म डर का गीत है, जादू तेरी नजर, जादू तेरी नजर। सुबह है वो और आगे बढ़ते हुए चलिए, गाना है जो फिल्म डर का गीत है, जादू तेरी नजर, जादू तेरी नजर। सुबह है बहुत।

और दोस्तों आगे बढ़ते हुए भूलना मत, इस कार्यक्रम के बाद में आप हो जाएंगे फिरोज भाई के साथ, फिर रॉय सिंह, फिर स्ट्रू के साथ, और फिर आप हो जाएंगे शशि जोकन के साथ, उसके बाद आप हो जाएंगे किसके साथ बताइए? जी हाँ, सताक्षी के साथ। ठीक है, तो कार्यक्रम जरूर सुनिएगा। अगला जो गीत है दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछो क्या बता सकोगे, अगर मैं आपसे पूछो कि आप जवाब दोगे गीत याद आ गया। एक इंसान बहुत प्यार में है, ठीक है, लेकिन उसका दिल बिल्कुल बेचैन है, उसे अपने जो दिल को सुकून नहीं मिल रहा है। कुछ पता होगा कौन सा गीत? थोड़ा सा म्यूजिक भी बज गया था अभी, खैर चलो क्विज नहीं करेंगे, मैं सुनवा देता हूँ आपको कौन सा गीत है, और इस गीत को गाया है किशोर कुमार ने। तो चलो सुनते हैं दोस्तों, गीत है ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए।

चैन आए मेरे दिल को, दुआ कीजिए भी आपने सुना दोस्तों। और अब हम यहाँ से निकल रहे हैं। जैसे आप जानते हैं कि एक छोटा सा ये एक घंटा का कार्यक्रम रहता है, लेकिन चलिए बहुत अच्छे अच्छे गीत अभी आपको सुनने को मिलेगा फिरोज भाई के साथ। ठीक है, अपना ख्याल रखेगा दोस्तों। हैव अ रेस्ट ऑफ द वीकेंड, लवली रेस्ट ऑफ द वीकेंड। हम मिलेंगे कल सुबह आपके साथ हो जाएंगे। ठीक है, नमस्कार दोस्तों, खुदा हाफिज़।

0: रेडियो ब्रिजवाणी 1701 ब्रिजबेन।
1: आपने बना लिया है गहरा संबंध, सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि समाज सेवा, इसी स्टेशन के सहारे हम करते हैं आपके साथ। फीजी समाचार, भेंट वार्ता, स्थानीय समाचार, सामाजिक सूचनाएं, सुनते रहिए संगीत की झनका।
2: दिलों को झंकृत करें,
3: हवाओं में फिजाओं में दिलकश संगीत के रंग बिखेरे।
0: रेडियो 71 ब्रिस्बेन पर यह है संगीत की झनकार और मैं हूं आपके साथी फिरोज खान।

इंतजार करने के लिए और साथ देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं हूँ आपका साथी फिरोज खान और वादे के मुताबिक एक बार फिर अपने स्टूडियो मेंसफील्ड ब्रिस्बेन में उपस्थित होकर आपका दिलचस्प कार्यक्रम संगीत की झनकार को पेश करेंगे, जिसको हम पेश करते हैं इस स्टेशन पर हर रविवार के सुबह 17:09 पर सुबह 10 से लेकर 12:30 बजे तक। हर सप्ते की तरह आपके लिए हम आपका परिचय कराते हैं, आपके लिए पेश करते हैं चुने हुए लोकप्रिय संगीत पुरानी फिल्मों से निकाली हुई, और उसके बाद करीबन 12 बजे से या 11:30 बजे से दे द गोल्डन एज ऑफ बॉलीवुड हिट्स ऑफ 90s साथ देने के लिए, जैसे मैं बता चुका हूँ, और इंतजार करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सुनने में आए हैं बहुत से लोग हमारे प्रोग्राम का इंतजार करते हैं हर रविवार के सुबह 10 से लेकर 12:30 बजे तक। एक्चुअली आप जैसे जानते हैं 17:01 इज द प्लेस टू बी ऑन संडे, ये हर रविवार को 17:01 के साथ आप जुड़ जाएं, क्योंकि सुबह 6 से 7 बजे तक आपके लिए पेश किया जाता है डिवोशनल संगीत। उसके बाद आप सुनते हैं, और फिर 7 से लेकर 8 बजे तक आप सुनते हैं हमारा साप्ताहिक इस्लामिक प्रोग्राम